0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शर्मा बंधुओं की आवाज़ में ये प्यारा सा भजन। इस गीत के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है अमर वाणी।
1: कषाय दहन शांतिम याति रागादिभिः समम् चेतः प्रसत्तिमाधत्ते वृद्धसेवावलम्बिनाम्। जो लोग बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं उनकी मनोविकार रूपी अग्नि शांत हो जाती है, चित्त में निर्मलता आती है और प्रसन्नता प्राप्त होती है। सत्तत्व निकषोद्भूतं विवेकालोकवर्धितं येषां बोधमयं चक्षुः ते वृद्धा विदुषां मताः। जिसके तत्व परीक्षा करते करते ज्ञान रूपी आँखों में विवेक का प्रकाश जगमगाता रहता है, ऐसे ही महापुरुषों को विद्वान लोग वृद्ध पुरुष कहते हैं। सुधांशुरश्मि संपर्काद विसर्पति यथाम बुधिः तथा सद्वृत्त संसर्गात नृणाम प्रज्ञापयो निधिः। जिस प्रकार चंद्र की किरणों के संसर्ग से समुद्र में वृद्धि होती है, उसी प्रकार सदाचारी लोगों के संसर्ग से, उनकी सत्संगति से मनुष्य के बुद्धि रूपी समुद्र में भी विस्तार होता है, उनकी बुद्धि भी बढ़ती है। कुर्वन्नपि तपस्तीव्रम विदन्नपि श्रुतार्णवम नासादयति कल्याणम चेद वृद्धान अवमन्यते। चाहे व्यक्ति कितना ही घोर तपश्चर्या करे, शास्त्र रूपी समुद्र का भी पारगामी हो जाए, किंतु यदि वह वृद्ध जनों का अपमान करता है तो उसे कल्याण की और मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। दहति दुरित कक्षम कर्म बंधम लुनीते वितरति यम सिद्धिम भाव शुद्धिम तनोति जयति जनन तीरम ज्ञान राज्यं च दत्ते ध्रुवमिह मनुजानाम वृद्ध सेवैव साध्वी। भली भांति की गई वृद्ध सेवा से, बड़े बूढ़ों की सेवा से निश्चय ही मनुष्य के पाप रूपी वन का भस्मीकरण हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, कर्म के बंधन कट जाते हैं और संयम की सिद्धि होती है, परिणाम निर्मल होते हैं और संसार रूपी समुद्र का किनारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। समाम्बुभि क्रोधशिखी निवार्यताम नियम्यताम मानमुदारमार्दवैहि यंच मायार्जव शस्त्रधारया मुनीश लोभश्च परिग्रहात्ययात्। जब क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही हो तब उसे क्षमा रूपी जल से बुझा देना चाहिए, अभिमान को मृदुता से जीतना चाहिए, माया का भाव मन में जब जागृत हो तो उसे सरलता से मिटाना चाहिए, और जब लोभ की वृत्ति बढ़ रही हो तो उसे अपरिग्रह की भावना से दबा देना चाहिए। येन येन निवार्यन्ते क्रोधाद्या परिपन्थिनः स्वीकार्यम् अप्रमत्तेन तत्तत् कर्म मनीषिणा। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो आलस्य छोड़कर ऐसा ही कार्य करता है जिनसे मन के विकार नहीं होते, क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते, ऐसे ही जो कार्य करता है वही वास्तव में बुद्धिमान है।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे अमर वाणी। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:35 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज प्रातः 6:40 पर भक्ति भाव श्रोताओं के लिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का प्रसारण किया जाएगा।

देश दुनिया की खबरों से आप रूबरू होंगे प्रातः 6:55 पर, जिसका प्रसारण किया जाएगा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में। प्रातः 7:20 पर आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार, और प्रातः 8:00 हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़। उर्दू प्रेमियों के लिए खबरनामा प्रातः 8:30 पर और उर्दू कार्यक्रम प्रातः 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा।

सुगम संगीत का आनंद आप ले सकेंगे प्रातः 9:50 पर, दोपहर 12:55 पर और शाम 8:15 पर। आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण किया जाएगा प्रातः 10:05 पर।

फिल्म संगीत प्रेमियों के लिए कार्यक्रम पूर्वा सुहानी प्रातः 6:31 पर, हिट्स सुपर हिट्स प्रातः 8:45 पर, गीतांजलि प्रातः 11:30 पर, गीत सुहाने दोपहर 12:30 पर, गीत मंजरी 12:45 पर और एक ही फिल्म से शाम 7:31 पर आप सुन सकेंगे।

लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 11:05 पर एवं शाम 6:45 पर। महिलाओं और बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 1:15 पर।

बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंच आप सुन सकेंगे दोपहर 12 बजे। भोजपुरी भाषा प्रेमियों के लिए भोजपुरी समाचार शाम 6 बजे और भोजपुरी कार्यक्रम देश हमार शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। युवाओं के लिए कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:05 पर, ग्राम जगत शाम 5:05

श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से अब आप सुनने जा रहे हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

वन गमन के लिए श्रीराम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधू की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहू को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्रीराम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमयी पाठ। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 870-001-4242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
4: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार। इसी के उपरांत आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार प्रातः 7 बजे, और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। तो आइए सुनते हैं हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
5: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः, डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेग नगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रवर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान्, यद्धि बहुविधैः सङ्कटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः। सः अवदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड 19 महामारीं तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा संकट समं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः सावहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विकविकासलाभः प्रबाधितः भविष्यति, जनसङ्ख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो संयुक्तरूपेण सुदृढापूर्तिशृङ्खलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बद्धेभ्यः अधिका महत्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रायाः तृतीय चरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीया यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। CBSE इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिक-2000-तमाब्दीयायाः राष्ट्रियशिक्षानीतेः 23-अधिक-2000-तमाब्दीयस्य राष्ट्रियविद्यालयशिक्षापाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु 33 भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीयमूलकं भवेत्। भारतीय अर्थ विभागेन अद्य अंडमान निकोबार द्वीप समूहाय पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ती क्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलम माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यंतरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
7: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
6: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम माहे लक्षद्वीप दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंदपलों में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।
2: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
3: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
2: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
3: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
3: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
6: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में BCCI की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है।
6: प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
1: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए CSR फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोरखपुर में 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा है कि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसका मुख्य उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाकर देश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित तथा आंतरिक होगा। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में कल रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कल अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
7: बहुत पुराना कॉलेज है आज़ादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इस पर मेरा प्रयास रहेगा।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से तैयार किए गए विंध्य प्रसादम गिफ्ट बॉक्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि ये पहल वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। विंध्याचल में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए विंध्य प्रसादम में चुनरी से लेकर पूजा की सामग्री और प्रसाद उपलब्ध है। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कल वाराणसी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बारिश से पहले नालों की सफाई, शहर की स्वच्छता और बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। चित्रकूट नगरपालिका क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। कल नगरपालिका परिषद की बैठक के बाद अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के साथ ही इसे सुंदर बनाया जा रहा है।
8: उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
1: मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आप सभी के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। आइए सुनते हैं टूटे खिलौने इस फिल्म से ये प्यारा सा गीत यसुदास की आवाज़ में। संगीत है बप्पी लाहिरी का और बोल लिखे हैं कैफी आज़मी ने। तो आइए सुनते हैं टूटे खिलौने से ये प्यारा सा गीत।

टूटे खिलौने, इस फिल्म से अभी आपने सुना यशुदास की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। आइए सुनते हैं बातों बातों फिल्म से ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत है राजेश रोशन का और बोल लिखे हैं योगेश ने। तो आइए सुनते हैं बातों बातों फिल्म से ये गीत।

0: इम्तिहान इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहाने। गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद।
1: डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। आइए सुनते हैं कैफी आजमी का लिखा हुआ, माफ कीजिए, सुनते हैं रविंद्र जैन का लिखा हुआ ये प्यारा सा गीत फिल्म चितचोर से। इस गीत को सुरबद्ध किया है यसु दास ने। तो आइए सुनते हैं चितचोर फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

0: काला पत्थर, इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत। इस गीत को सुरबद्ध किया था लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों ने। बोल थे साहिर लुधियानवी के और संगीत था राजेश रोशन का। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहानी यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
5: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
6: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
5: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की।

0: बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 एटीपी चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूरसंचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मानसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten.

0: यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नेदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
1: तरजीही शोबों में वसी इश्तराक के लिए कई समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी तक ले जाने का ऐलान करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान ताल्लुकात में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है और उन्होंने नीदरलैंड को भारत का एक कलीदी यूरोपीय शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका जमहूरी अकदार मजबूत माशी तआवुन और अवाम से अवाम के दरमियान गहरे रिश्तों पर मबनी है।
0: हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए।
1: नीदरलैंड के वजीर आजम रॉब जिटन ने भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया और माशी और कलीदी शोबों में मजबूत तआवुन की हिमायत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। ये दौरा भारत और स्वीडन के दरमियान वसत पा रहे इश्तराक के लिए एक तारीखी संगे मील साबित होगा। जनाब मोदी बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने की खातिर स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत करेंगे और बाहमी बातचीत को तिजारत को बढ़ाने के साथ साथ मसनूई जहानत AI उभरती हुई टेक्नोलॉजीज स्टार्टअप्स रेजिलियंट सप्लाई चेन्स दिफा खला आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और अवाम के दरमियान रिश्तों और कार्रवाई माहौल दोस्त बदलाव की जानिब मुंतकली को बढ़ाने के लिए तआवुन के नए मौके तलाश किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म सनद के लिए यूरोपियन गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे जो यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डर लायन के साथ एक सरकर्दा पैन यूरोपियन सरबराहों का फोरम है। ये बातचीत वजीर आजम के वसी यूरोपी दौरे के तीसरे मरहले का एक हिस्सा है और जनवरी 2026 में हुए भारत यूरोपियन आजाद तिजारती मुआहदे FTA के बाद से खित्ते का ये पहला दौरा है। ये दौरा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने की गरज से तैयार किया गया है और इसका मकसद तेजी से बढ़ती हुई तब्दीलियों और पेचीदा जोग्राफियाई चैलेंजों के दौर में तआवुन का पता लगाना है। ये दौरा इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी के रुझान के बाद हो रहा है जहां दो तरफा तिजारत साल 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अमरीकी डॉलर हो गई और साल 2000 से 2025 के दरमियान भारत में स्वीडन के रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 2.825 अरब डॉलर्स रहा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: स्वीडन जो दुनिया की सबसे ज़्यादा इख्तराई मईशतों में से एक है भारत के डिजिटल पूल के साथ कुदरती हम आहंगी तलाश कर रहा है। फिलहाल 280 से ज़्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं जबकि 75 भारतीय फर्म स्वीडन में कायम हो चुकी हैं। इस दौरे की एक ख़ास बात वज़ीरे आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर के साथ यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस बराए सनद से मुश्तरक तौर पर खिताब है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन सनती इंजमाम की तरफ बढ़ते हुए एक मरकजी सतून में तब्दील हुआ है। इन ताल्लुकात की जड़ें 2009 के दिफाई ताउन के माहदे और 2019 के जनरल सिक्योरिटी माहदे में पेवस्त हैं। मसनूई जहानत AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन इस शराकतदारी की बुनियाद फराहम करता है। इसके अलावा दोनों ममालिक खलाई तहकीक में भी ताउन कर रहे हैं। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए आला फराहम कर रहा है। आखिर में वजीर आजम का गोटेनबर्ग का दौरा तारीखी एतमाद को मुस्तकबिल के लिए तैयार अहदाफ से जोड़ता है। गोटेनबर्ग स्वीडन से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत और स्वीडन के दरमियान तिजारत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों की विरासत है जो एक सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित है और इसकी जड़ें बाहमी एहतराम पुरअमन वका और अहिंसा के नज़रिए में पेवस्त हैं। इस गहरे ताल्लुक की निशानदेही नोबेल इनाम याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर के साल 2000 साल 1926 के स्वीडन दौरे के 100 साल मुकम्मल होने से होती है। आज ये ताल्लुकात सकाफती बुनियादों से आगे बढ़कर जामे सनती इक्तसादी शराकत दारी में बदल रहे हैं। कीमती धातुओं पर इजाफी कस्टम ड्यूटीज आयद करने के कुछ ही दिनों बाद हुकूमत ने अब चांदी की दरामद में कटौती की है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टोरेट जनरल DGFT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि चांदी पर सोने का पानी चढ़ी चांदी और प्लेटिनम समेत चांदी पर दरामदी पॉलिसी को फौरी तौर से आजाद से पाबंदी शुदा के जुमरे में तब्दील किया गया है। हुकूमत ने बुध के रोज कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। पाबंदियां आयद किए गए जुमरे की अशिया की दरामद के लिए हुकूमत की लाइसेंस की जरूरत होती है। दिल्ली हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए कौमी दारुल हुकूमत में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैल्यू एडिड टैक्स को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला किया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कनेक्टिविटी और माशी सरगर्मियों को मजबूत बनाने पर जोर देने से मुताबकत रखता है, जिसका मकसद शहरी हवाबाजी के शोबे को राहत फराहम करना, सियाहत और लॉजिस्टिक्स से मुतालिक सरगर्मियों को फरोग देना है। वजीर आला ने बताया कि ये रियायती शरह आइंदा 6 माह तक नाफिज रहेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महकमा आसार कदीमा ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में वाके भोजशाला कॉम्प्लेक्स इमारत में हिंदुओं को पूजा पाठ और दीगर मकासद के लिए बिला रुकावट रसाई की इजाजत दे दी है। महकमा आसार कदीमा का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले में भोजशाला को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: महकमा आसार कदीमा के हुक्मनामे का हवाला देते हुए एक अफसर ने बताया कि भोजशाला मंदिर के अलावा संस्कृत जबान, कवायद और अदब सीखने सिखाने और तहकीक का मरकज भी रही। अफसर ने मजीद बताया कि हिंदू बिरादरी के सरस्वती देवी की पूजा और सीखने सिखाने के कदीम तरीक़ेकार से ताल्लुक़ की बिना पर उन्हें कॉम्प्लेक्स में बिला रुकावट रसाई की इजाज़त होगी। इससे पहले जुमे के रोज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया था और कहा था कि मरकज और ASI इसके इंतजाम व इंसराम तय कर सकते हैं। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 7 अप्रैल 2023 के महकमा आसार कदीमा के उस हुक्मनामे को भी कलदम करार दिया, जिसमें मुसलमानों को हर जुमा को भोजशाला कॉम्प्लेक्स में जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत थी। दलाइल की समाअत कर रही बेंच ने यह भी कहा कि मुसलमान बिरादरी जो ASI के तहफ़ वाली 11वीं सदी की इमारत को कमाल मौला मस्जिद मानती है, वो ज़िले में मस्जिद की तामीर के लिए अलहदा ज़मीन अलाटमेंट की खातिर रियासती हुकूमत से रुजू कर सकती है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी।
1: CBI ने नीट पेपर लीक केस के सिलसिले में पुणे से एक और अहम मुलजिमा को गिरफ्तार किया है। मुलजिम प्रोफेसर मनीषा मंधारे पुणे में एक कॉलेज में बॉटनी के उस्ताद हैं। CBI के मुताबिक कौमी जांच एजेंसी ने इम्तिहान के अमल में एक एक्सपर्ट के तौर पर उनका तकर्रुर किया था। इससे पहले 14 मई को एक और मुलजिमा मनीषा वाघमारे को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुलजिमान

श्रोताओं, आप हमें मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:45 और 20 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है आप सभी के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स। आइए सुनते हैं 1947 अर्थ फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत है AR रहमान का।

0: युग पुरुष इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत। इस गीत को सुरबत किया था प्रीति उत्तम सिंह ने। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत था राजेश रोशन का। श्रोताओं, आप आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स। गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स। आइए सुनते हैं महबूब का लिखा हुआ ये गीत। इस गीत को सुरबत किया है लता मंगेशकर और सोनू निगम ने। संगीत है AR रहमान का और फिल्म है 1-2 का 4।

खिलाड़ी, इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत। इस गीत को सुरबद्ध किया था अभिजीत और अलका याग्निक ने, बोलते हैं अनवर सागर के, और संगीत था जतिन ललित का। श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं हिट सुपर हिट्स कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है बॉर्डर फिल्म से। इस गीत को सुरबद्ध किया है सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ ने। तो आइए सुनते हैं बॉर्डर फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट सुपर हिट्स यहीं संपन्न होता है। आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित सामयिक चर्चा।

0: के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे,
2: कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है, इनमें कृषि की खास भूमिका है। ऐसे में देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में योगदान देकर देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश गेहूं, दूध

0: गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। औद्यानिकी के क्षेत्र में भी देश के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश की इस उपलब्धि ने युवा पीढ़ी को भी बागवानी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया है। आज काफी संख्या ऐसे युवाओं की है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद स्टार्टअप के तौर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कैसे वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा। मनीष जी, सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?
1: सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो आपने प्रश्न उठाया बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। पूरे देश में न सिर्फ कृषि में बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे कि मेडिकल रिसर्च जिसमें ICMR, इंडस्ट्रियल रिसर्च है जिसमें CSIR और जो कृषि का शोध है जिसमें कि ICAR जैसे संस्थान रोज नवाचार कर रहे हैं और नई नई तकनीक का विकास कर रहे हैं। इन तकनीकियों के माध्यम से स्टार्टअप का बहुत सारा सृजन हो रहा है। अब भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का देश
0: जी।
1: और लगभग समय 5000 स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप काम कर रहे हैं, बहुत बड़े जैसे कि देहात है, निंजा कार्ट है, ऐसे तमाम स्टार्टअप आज इस देश में विकसित हैं। और ये तब संभव है जबकि कृषि तकनीकी नवाचार के माध्यम से विकसित हो गई हैं और इनके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का, डिजिटाइजेशन का, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, AI लेड प्रिसीजन फार्मिंग का एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया है।
0: जी मनीष जी, एक खास रुझान जो देखने को मिल रहा है कि जो आजकल के युवा हैं वो पढ़ाई करके हायर स्टडीज करने के बाद भी जॉब करने के बजाय कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कोई युवा अगर स्टार्टअप के तौर पर कृषि को अपनाना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है?
1: कृषि आज भी इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और जो स्टार्टअप की संभावनाएं हैं जो वो सबसे बड़ी कृषि में है। तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके, उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा में उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की, हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में बहुत सारे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM में बहुत सारे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको तकनीक के माध्यम से, आपको फंडिंग के जरिए, आपको तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप एक स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी युवा किसी भी जगह जहां भी रहता हो पूरे देश में, वो अपने पास का जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसको संपर्क कर सकता है, उसके माध्यम से एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।
0: जी, खासतौर से अगर फसलों की बात करें कि एक रूटीन जो हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उनके अलावा भी बहुत तरह की फसलें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो आमदनी को बढ़ाती हैं, तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और उनकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में?
1: मुझे लगता है कि सारी फसलें आपकी अच्छी होती हैं, उसमें कोई फसलों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या है डिमांड और सप्लाई का जो गैप होता है उसका अध्ययन करना जरूरी है। किसी भी जगह में आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है। कहीं भी बहुत बड़ा देश है तो उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं अलग अलग होती हैं, तो एक जवाब तो उसके लिए मुफीद नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी फसलों को नेट हाउस कंडीशन में उगा सकते हैं जबकि वो सामान्य दशाओं में उगाई नहीं जा सकती, तो उनमें आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे किसान खीरे की खेती करते हैं एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, टमाटर की खेती करते हैं, अन्य सब्जियों की खेती करते हैं जिनको उनको अतिशय लाभ होता है। तो ऐसी फसलों के चुनाव के लिए क्या करना होगा कि आपको वहाँ के जो किसानों का जो भी वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, चाहे वो ICR का हो या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और उनसे एक पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि इस समय में, इस वातावरण में मैं कौन सी ऐसी खेती कर सकता हूँ कि मुझे अधिकाधिक लाभ हो। तो इसके लिए जो है एक मतलब एक सामान्य उत्तर नहीं हो सकता कि पूरे देश में कौन सी फसल फायदेमंद होगी, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों पे निर्भर करेगी।
0: मनीष जी, आपका खास जुड़ाव आम के रिसर्च से है, आपका इंस्टीट्यूट में आम को लेकर काफी काम होता है, और यूपी में खासकर मलिहाबाद का दशहरी आम या प्रदेश के अन्य हिस्सों में जो आम की फसल है वो एक्सपोर्ट भी होती है और बहुत फेमस भी है। तो अगर इससे जुड़ना चाहते हैं युवा तो वो कैसे शुरुआत करें?
1: जो मलिहाबाद का दशहरी आम है ये विश्व का बहुत प्रख्यात आम है और इसको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 125, GI 125, यानी कि इस तरह का आम मलिहाबाद के किसान या आसपास के किसान ही उगा सकते हैं और कोई नहीं उगा सकता। और इसकी मार्केटिंग और इसकी ब्रांडिंग और इसका प्रमोशन और इसका एक्सपोर्ट पे तमाम सारी CISS लखनऊ ने पहल की है। ये आम पिछले वर्ष यहाँ से समुद्र के माध्यम से सिंगापुर तक भेजा गया जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और इस फसल को इससे पहले भी हम लोगों ने अमेरिका में भेजा था एयर के रूट से और वहाँ भी लोकप्रिय हुआ। तो इसकी अपार संभावनाएं हैं, युवाओं को चाहिए कि इस बहुत ही खूबसूरत फसल के साथ जुड़े और इसको बहुत बढ़ावा दें क्योंकि इस पूरे विश्व में बहुत लोकप्रियता है।
0: जी मनीष जी, जो आम एक्सपोर्ट होते हैं एक बड़ा हिस्सा उसका है जो मलिहाबाद से जाता है, और जैसा कि आपने बताया कि जगह जगह पर निर्यात किया जा रहा है और काफी दूर तक इसने अपनी पहुंच बना ली है, तो इसमें बीते कुछ सालों में आप कितना सुधार लगता है कि आया होगा?
1: उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ पर कोई भी समुद्र की सीमा नहीं लगती, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप आम को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास एक वायु का माध्यम रह जाता है, और एयर का जो माध्यम होता है वो बड़ा महंगा होता है, करीब 450 रुपए किलो होता है उसका खर्चा आता है। अगर आप समुद्र से ले आते हैं तो वो बेहद सस्ता हो जाता है, यानी कि आपका 50-60-100 रुपए के, तो ये माध्यम सबसे बढ़िया माध्यम है अगर समुद्र से ले जाए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आप ले जाओगे वायु मार्ग से तो आपका 4 दिन में आम पहुंच जाएगा, 2 दिन में आम पहुंच जाएगा, लेकिन आप अभी समुद्र के मार्ग से ले जाते हैं तो वो लगता है 30-35 दिन, अगर आप दुबई पहुंचाना है तो कम लगता है, लेकिन अगर आप सिंगापुर ले जाओगे तो आपको लगभग 22-25 दिन लग जाता है, आपको आप रशिया ले जाओगे तो लग जाता है 30-32 दिन। तो ये समुद्र का मार्ग से ले जाने के लिए सबसे पहले क्या है कि आम की शेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो केंद्रीय उपज बागवानी संस्थान है उसने एक तकनीक विकसित की जिसको सी रूट प्रोटोकॉल कहते हैं, कि यानी समुद्र से ले जाएं तो उसका पूरा प्रोटोकॉल विकसित किया कि इस तरह से आम को आप तोड़ें, इस तरह से आम को उगाएं, इस तरह से आम को पैक हाउस में लाएं, ऐसे पैक करें, और इस तरह से अगर आम धीरे धीरे समुद्र में जाता है तो 30-35 दिन आराम से आम रहता है। तो ये बहुत बड़ी संभावना जो है पिछले कुछ सालों में खुली है जिसकी वजह से बहुत सारे निर्यातक अभी सामने आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं सामने, और वो हमारी तकनीक का हमारे प्रोटोकॉल का उपयोग करके विभिन्न देशों में आम को भेजा। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस तकनीक के द्वारा हमारा आम जो है पूरे विश्व में जा।
0: जी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को क्या संदेश देंगे आप जो मन बना रहे हैं कृषि के तरफ आने के लिए और वो चाहते हैं कि कृषि के माध्यम से वो आगे बढ़ें और अपनी आय को बढ़ाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
1: मैं तो ये कहता हूँ कि युवाओं के लिए कृषि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। पूरे दुनिया में सारे व्यवसाय में उतार चढ़ाव आ सकता है, कृषि में नहीं आ सकता, क्योंकि कृषि आपकी से उपजे हुए जो उत्पाद होते हैं आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, आपको रोज खाना चाहिए होता है, आपको रोज फल चाहिए होते हैं, आपको रोज सब्जियां चाहिए होती हैं, और इसमें अगर आप युवा आगे आते हैं तो उनके पास बेहद बड़े अवसर हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो खासतौर पर प्रोसेसिंग में आते हैं, जहाँ पर कि फलों को या अनाज को या सब्जियों को प्रोसेस करके और एक प्रोडक्ट फॉर्म में लाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट इस देश में अभी है और जो कि बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, तो उसमें अपार संभावनाएं हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। मैं सारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि इस क्षेत्र में आएं और देखें कि एक तरह से आपका विकास हो।
0: जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: श्रोताओं, आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि सोने और प्लेटिनम से बड़ी मड़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कॉर्निलो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं नूर मोहम्मद और संचालन किया है जूही मेहरोत्रा ने। तो आइए सुनते हैं हेलो फरमाइश।
4: Five, five, five, one, two, two, zero, five, three, eight, six. Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
4: Hello, Farmaish.
8: Hello, Farmaish.

0: नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं श्वेता हाजिर हूँ लेकर आपके लिए आपका अपना पसंदीदा फोन इन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, क्योंकि हर दिल की एक ख्वाहिश है। श्रोताओं, कार्यक्रम को बिना समय गवाए आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। नमस्कार, हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार,
0: मेरी किन से बात हो रही है?
1: हमारे बात हो रही है मऊ जिला उत्तर प्रदेश से, संजय कुमार।
0: संजय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, हम लोग ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल मना रहे हैं। आप कब से ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़े हैं?

0: अरे मैं बहुत पुराने श्रोता है, जिस समय रेडियो का जमाना था उस समय से हम लोग जुड़े हुए हैं।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया।
0: तब नहीं सुनते हैं तब तो खाना भी नहीं निक लगता है।
1: अच्छा, किस तरह के प्रोग्राम पसंद करते हैं आप?
0: यही मैं जब से आपका जो हेलो फरमाइश आया था, ये पत्र मिला सुनते थे, यही मैं समाचार और जो है आपके जो पुरुआ सुहाने गाने उन्हें आते हैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: मैं आज अपने एक हम साथ साथ फिल्म का गाना सुनना है, ये तो सच है कि भगवान है
1: जी। ठीक है, तो लीजिए श्रोताओं, संजय जी की फरमाइश पर हम साथ साथ हैं इस फिल्म से हम सब मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।

0: हेलो
1: जी नमस्कार, मेरी किनसे बात हो रही है?
0: जी नमस्कार, मैं जयप्रकाश भारती स्टेशन रोड बस्ती से बोल रहा हूँ।
1: क्या करते हैं आप?
0: जी मैं जनरल स्टोर की दुकान करता हूँ।
1: अच्छा, जयप्रकाश जी बताइए कि हाल के सालों में आपने खुद मौसम या क्लाइमेट चेंज में क्या बदलाव देखा है, ऐसा कुछ आपने महसूस किया है?
0: जी वातावरण तो फिलहाल ये है कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऋतु परिवर्तन में बहुत ज्यादा तब्दीली हुई है और बेमौसम की बरसातें भी हो रही हैं, कभी ज्यादा गर्मी पड़े कभी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, सारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है।
1: हाँ बिल्कुल, ये परिवर्तन दिख रहा है। तो ऐसे में आपका क्या सुझाव होगा, हमारे सुनने वालों को बताइए कि हमें क्या करना चाहिए?
0: लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास करें।
1: जी बिल्कुल, ऐसा तो हमारे सुनने वाले हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि वातावरण में बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। चलिए, बातें तो आपने बहुत अच्छी बताई, अब आप फरमाइश कीजिए, आज आपको कौन सी फिल्म से गीत सुनना है?
0: फिल्म का नाम है जहर और गायिका हैं श्रेया घोषाल और गीत के बोल हैं अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम।

0: नमस्कार, हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आकाश माने गोरखपुर।
0: जी बिल्कुल, बहुत स्वागत है। मेरी किन से बात हो रही है?
1: का जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए तो रेडियो आपके साथ कैसे जुड़ा है?
1: जी बिल्कुल, हम सब जो है आकाशवाणी और प्रसार भारती की स्थापना के 90वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और जून के महीने में ये 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे। रेडियो हमारे जीवन में इस तरह घुला मिला हुआ है कि जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, तो हमारा दिन बीतता है। ये मेरा एक साथी के रूप में, सच्चा साथी और जीवन साथी के रूप में हमारे साथ रहता है। सुबह से लेकर रात तक ये हम इससे जुड़े रहते हैं और आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया,
1: शिक्षा मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और समय समय पर जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं उनके बारे में भी सटीक और विश्वसनीय जानकारी दी जाती है आकाशवाणी के द्वारा।
0: आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है हमारे सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अब आप एक गीत की फरमाइश कीजिए।
1: फिल्म का नाम है बाबरची, भोर आई गया अंधियारा।
0: तो लीजिए श्रोताओं, शारदा प्रसाद प्रजापति जी की फरमाइश पर इस फिल्म से ये खूबसूरत गीत।

दाय उठाय लियो गिर नख पर बंस बजावत देन चनैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: नमस्कार, हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह, बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं आप?
1: मैं SCCL में सर्विस करता हूँ मैडम, ड्यूटी परेड में हूँ। ड्यूटी परेड में ही आपके केंद्र में फोन कर रहा हूँ। कई केंद्र में फोन करता हूँ, ढूंढता हूँ लाइव में, ईमेल में, और प्रसारण भी सुनता हूँ
0: जी। बहुत
1: और आपसे बातचीत हो रहा, डबल खुशी बढ़ रहा। और दिसंबर के अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है कलाकार।
0: अच्छा।
1: और गीत ये बोले खोए खोए रहे तेरी चाहो में, गाय किशोर कुमार और शायद अनुराधा पुरवाल है इसकी।
0: जी,
1: साधना सरगम, साधना सरगम।
0: ठीक है,
1: ये कुणाल गोस्वामी जी का फिल्म का गाना है।
0: बिल्कुल।
1: सबसे पहले गीत आपको के निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी गोरखपुर में जुड़े सभी लोगों को, सभी उद्घोषक भाई बहनों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपकी सहेलियों को, ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, सभी को डिटेल करना मैडम।
0: तो लीजिए श्रोताओं, इंद्रभान सिंह जी ने तो एक सांस में सब कुछ कह डाला और कलाकार फिल्म से इस गीत की फरमाइश की है। आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार, हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम।
0: जी बहुत स्वागत है, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैम प्रदीप बोल रहा हूँ।
0: प्रदीप आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ललितपुर से बोल रहा हूँ मैम।
0: हाँ जी, ललितपुर से आप बात कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपने कभी कोई पेड़ लगाया है?
1: यस मैम, लगाया है। बड़े बड़े आम के पेड़ लगाता हूँ ना।
0: अच्छा,
1: हमारे पे लगे हुए हैं
0: जी। तो उसको लगाने का कोई अपना अनुभव शेयर कीजिए
1: ना मैम। मेरे को अच्छा लगता है हरियाली, जो पेड़ पौधे फल फूल वाले पेड़ पौधे वो अच्छे लगते हैं हमको।
0: हाँ जी, पेड़ लगाते हैं।
1: हाँ, रखवाली भी करते हैं मैम।
0: जी जी, तो कौन कौन से पेड़ लगाए हैं आपने?
1: अभी आम का लगाया था, अमरूद का लगाया, आंवला का है।
0: तो आम का पेड़ कितने साल में फल जाता है?
1: तीन, अभी तो जो सरकारी वाली लगाए थे 3 साल में हुए थे मैम।
0: अच्छा, तो अभी फल आ रहे हैं उस पेड़ पर?
1: नहीं, इस बार तो नहीं आया, अगली बार आएगा।
0: जी अगली बार आएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रदीप जी बताइए, आज आपको कौन सा गीत सुनवाऊं?
1: एक सॉन्ग सुनना था मैम, मैं तुलसी तेरे आंगन की का टाइटल सॉन्ग है।
0: बहुत सुंदर, फिल्म से आपने गीत पसंद किया है। तो लीजिए श्रोताओं, आइए इनकी पसंद पर सुनते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन, इस फिल्म का ये गाना।

0: नमस्कार, हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार
0: जी, मेरी किन से बात हो रही है?
1: व्यास ने शुक्ला रघुनाथपुर।
0: बहुत स्वागत है व्यास जी, आपसे तो कितने दिनों बाद बात हो रही है।
1: और क्या हाल चाल है?
0: सब बढ़िया हैं। हम लोग ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल मना रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: रेडियो तो मेरा नाजवाब है, उसके लिए
0: अच्छा, मतलब इतना प्यारा साथी है कि आप उसके बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जा रहे हैं।
1: हम चाहते हैं कि आपकी बात अपनी बहन से कराएं, क्योंकि हम इस समय अपनी बहन के घर पर हैं।
0: अच्छा, बिल्कुल, बात कराइए बहन से अपनी।
1: हाँ, मैं मनसा दुबे बोल रही हूँ।
0: वर्षा जी, बहुत स्वागत है। व्यास जी से तो हम लोग की बात होती रहती है, आज आपके घर में है तो आपसे बात करवा रहे हैं।
1: हम बहुत पुराने श्रोता है आपकी।
0: अच्छा, आपकी आवाज़ आपके भाई से बहुत मिल रही है, हमें तो लग रहा वही बात कर रहे हैं।
1: सोचे रहते तब सबसे आपका पता रेडियो में बहुत मतलब सुनती थी।
0: तो बताइए, आज आप दोनों भाई बहन को मैं कौन सा गीत सुनवाऊँ? व्यास जी की फरमाइश पर, उनकी बहन की फरमाइश पर ये गाना।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूमती रहती हो मुझे, तुम्हीं ने तो जादू डाला है मुझ पे।

0: नमस्कार, हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार
0: जी।
1: राम कटिया पोस्ट जयपुर बुधाट और जिला गोरखपुर।
0: अच्छा, बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका?
1: अमीन चंद।
0: क्या करते हैं आप?
1: कुछ करता नहीं, इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया था तो घर पे बैठा ही रहता हूँ।
0: अच्छा, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाऊं?
1: गाना है तुझे, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मन अडे आवाज में
0: जी।
1: वो हमारा पोता उसके लिए है, उसके लिए।
0: अच्छा, आप अपने पोते के लिए ये गाना समर्पित करते हैं। कैसा है वो? बहुत शैतान है?
1: शैतान तो बहुत है।
0: हाँ, कितना बड़ा है?
1: 11 साल का है।
0: अच्छा, फिर तो बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे।
1: हाँ, पढ़ाई कर

0: नमस्कार, हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते मैडम जी, विनोद पांडे बस्ती जिला बोल रहे हैं मैडम जी।
0: बहुत स्वागत है विनोद जी, क्या करते हैं आप?
1: तो कोई फरमाइश ले लीजिए आप।
0: अच्छा बताइए।
1: साजन फिल्म का है, साजन साजन पुकारूं गलियों में, साजन साजन पुकारूं गलियों में।
0: बिल्कुल आप, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप रेडियो के साथ बहुत जमाने से जुड़े हुए हैं।
1: मैडम जी समझ जाइए, हमारे बाबा जी थे वो जुड़े थे,
0: हाँ।
1: उसके बाद हमारे दादा जी थे वो जुड़े थे, उसके बाद उन्होंने हमको हैंड ओवर कर दिया, उसी से मैं भी जुड़ा रहता हूँ। सुभाष साहब जब आपका भक्ति लाइन से लेकर हर एक प्रोग्राम आपका सुनता हूँ, और रात में जो आपका बंद होता है तब मैं अपना बंद करके तब सोता हूँ।
0: बस बस मुझे यही सुनना था। तो श्रोताओं देखिए, हम लोग किस तरीके से अपने 90 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतने बढ़िया।

0: श्रोता है हमारे साथ,
1: मैं गाना गुनगुन रही है,
0: मैं श्वेता बात कर रही हूँ।
1: तो श्वेता जी, आपका तो रोज प्रोग्राम आता, मैं रोज सुबह सुनता हूँ मैडम जी।
0: आपको अच्छा लगता है?
1: कल या परसों आपका आया था, आपने सुनाया है, उसको मैं सुनता गया, सुनने के बाद अपना नहाया है।
0: कौन सा कार्यक्रम?
1: एक सुबह वाला आता है जो हंसते गुनगुनाते।
0: अच्छा, गाते गुनगुनाते। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया, आप तो हमारे बहुत ही बढ़िया श्रोता हैं। और आइए अब आपको आपकी पसंद का ये गाना सुनवाती हूँ।

0: नमस्कार, हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, बहुत स्वागत है।
1: मैं सुबोध कुमार साहब बोल रहा हूँ, बरगढ़ उड़ीसा से। मैडम,
0: उड़ीसा से बहुत स्वागत है आपका।
1: मैं आपकी गोरखपुर का कार्यक्रम हर रोज सुनता हूँ मैडम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी सुबोल जी, हमारे सुनने वालों को बताइए, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए हमको इस मौसम में?
1: हाँ मैडम, अभी तो धूप की महीना है, धूप बहुत तेज है, गर्मी का महीना है
0: जी।
1: और गर्मी से बचने के लिए हम लोग को हर ठंडा पानी पीना चाहिए और समय के अनुसार हमें काम काज करना चाहिए, नहीं तो अंशुघात का शिकार होना हमको जरूर तो पड़ेगा। इसलिए सभी को सतर्क होना पड़ेगा, पढ़ना के लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। और अब आप एक गीत की फरमाइश कीजिए।
1: आज हमको सुना देना बाजीगर फिल्म का गाना जो विनोद राठौड़ जी ने गाया है, छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता, वही गाना सुना देना मैडम।
0: तो लीजिए श्रोताओं, सुबोल कुमार जी की फरमाइश पर बाजीगर इस फिल्म से।
1: हाँ मैडम, मेरे कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहता
0: लीजिए।
1: मेरे दोस्तों का नाम है नागू पात्रा, चित्रासन सवर, हरेश कुमार पुरा, चैतन्य पटेल, विश्वपंत पैक, आनंद मिहिर, लोकनाथ साहु, लोकनाथ प्रधान, राधाकांत भोई, भक्ताचरण भोई, और सभी गोरखपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं को ये गाना डेडिकेट कर देना मैडम
0: जी। हम सब साथ मिलकर सुनते हैं।
2: छुपा

0: श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बाजीगर फिल्म से थी। आज के इस प्रोग्राम को टेक्निकल सपोर्ट मिला इंजीनियर आद्या कुमार और मोहम्मद कैसुद्दीन का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे नूर मोहम्मद। अगले इतवार आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: 0551220538 6
2: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Farmaish.
8: Hello, Farmaish.

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो फरमाइश। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे नूर मोहम्मद और संचालन किया था जूही मेहरोत्रा ने। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, यांत्रिक मेधा, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अरब डॉलर का रहा और वर्ष 2000 से 2025 के बीच स्वीडन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.8 अरब डॉलर से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच कल हेग में हुई वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति जिले के येरुपेडु में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित मई तक चलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के कलाकार हैं राजेंद्र प्रसाद व साथी।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आज के कलाकार थे राजेंद्र प्रसाद व साथी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: जब से मेरे
1: सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी तेरी मेरी कहानी, संगीत था साजिद वाजिद का और गीत के बोल लिखे थे प्रसन्न जोशी ने।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अरिजीत सिंह का गाया ये गीत आपने सुना। फिल्म थी हार्टलेस, गीत में संगीत दिया था गौरव डागोनकर ने और गीत के बोल लिखे थे अराफात महमूद ने।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

फिल्म बजरंगी भाईजान का अभी आपने ये गीत सुना जिसे गाया था पलक मुच्छल और मोहित चौहान ने। गीत में संगीत दिया था प्रीतम ने।

ये गीत था फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से, जिसे गाया था अरमान मलिक ने और संगीत दिया था अमाल मलिक ने। गीतांजलि कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बाल मंच, जिसे लेकर आ रही हैं रंजना मिश्रा।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: तो बच्चों, हम लेकर आ गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंच आपके संग, जहां हम करेंगे बहुत सारी बातें और होगी खूब मस्ती। लेकिन भाई, सबसे पहले हम आपसे बारी बारी आपका परिचय तो कर लें, क्योंकि भाई जब परिचय नहीं होगा तो हमारी आपस में जान पहचान कैसे होगी और फिर मस्ती कैसे होगी। तो हम सबसे पहले आते हैं आपके पास। आप बताइए कि आपका नाम क्या है।
2: मेरा नाम अंशिका कश्यप।
3: मेरा नाम काजल भारती है।
4: मेरा नाम नव्या चौहान है।
0: और आप भाई, आप भी आइए आगे।
5: मेरा नाम विभांशु राय है।
6: मेरा नाम रोशनी यादव है।
0: भाई, बच्चों के नाम भी बड़े प्यारे प्यारे हैं और ये बच्चे हैं भी बड़े अच्छे। ये बच्चे आज लेकर आए हैं बहुत सारी कहानियाँ, पहेलियाँ, कविताएं, चुटकुले और गाने भी। तो भाई, हो जाइए तैयार बच्चों के इस चौकड़ी में शामिल होने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तैयार मचाने को धमाल, है ना बच्चों?
1: हाँ दीदी।
0: सबसे पहले हम आते हैं अंशिका, काजल और रोशनी के पास, जो कि लेकर आई है बहुत ही प्यारा सा भजन। और बच्चों, जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है और ये भक्ति के साथ हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्यों, है ना?
1: हाँ दीदी।
0: तो चलिए, सबसे पहले हम आते हैं इन बच्चों के साथ और सुनते हैं ये भजन।
1: वीर

0: बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। क्या बात है भाई, बच्चों ने इतना अच्छा भजन गाया कि मन जो है बिल्कुल भक्तिमय हो गया है। और अब बच्चों का उत्साह देखने लायक है, बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे हैं और इनके चेहरे पे मुस्कान आ गई है, क्योंकि भाई वो अपना ले आया हुआ पिटारा खोलने वाले हैं, एक के बाद एक धूम मचाने वाले हैं। क्यों बच्चों?
1: हाँ दीदी।
0: और अब बताइए क्या लेकर आ रहे हैं आप?
2: हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आ रही रवि की सवारी, और इसे लिखा है श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलू विजय का पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। धन्यवाद।
0: तो बच्चों अब विभांशु आ गए हैं आप सबके लिए कहानी लेकर।
3: हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आए। ये कहानी दो मित्र सारस और सियार की है। अमृत वन में दो मित्र रहते थे, एक था लंबी चोंच वाला सारस और दूसरा था सियार। एक दिन सियार को शरारत सूझी, उसने सारस से कहा, मित्र कल मैं खीर बनाऊंगा, तुम जरूर आना, हम दोनों मिलकर खाएंगे। सारस प्रसन्न हो गया। सारस अगले दिन सियार के घर पहुंचा। सियार ने सारस को थाली में खीर परोसा, सारस उसे खा नहीं पा रहा था। उधर सियार जल्दी जल्दी अपनी थाली की खीर चट कर गया। उसने सारस से कहा, क्या हुआ मित्र, तुम्हें खीर पसंद नहीं आई क्या? सारस को कुछ नहीं सूझा तो उसने कह दिया कि आज उसका पेट ठीक नहीं है। यह सुनते ही सियार ने सारस की थाली का भी खीर खा लिया। उस दिन सारस को भूखा ही रहना पड़ा। सारस समझ गया कि सियार ने उसके साथ एक गंदा मजाक किया है, इसलिए उसने भी सियार को सबक सिखाने का निर्णय लिया। एक दिन सारस ने सियार को अपने घर पर सेवइयां खाने के लिए निमंत्रित किया। सियार अगले दिन सारस के घर पहुंच गया। सारस ने एक पतले और लंबे मुंह वाले बर्तन में सेवइयां परोस दी। सियार का मुंह तो उसमें जा ही नहीं रहा था। उधर सियार ने अपनी लंबी गर्दन और चोंच की मदद से सभी सेवइयां साफ कर दी। उसने सियार से पूछा, क्या हुआ मित्र, आज तुम्हारा पेट खराब है क्या? यह कहकर उसने सियार के हिस्से की भी सेवइयां खत्म कर दी। सियार समझ गया कि यह उसके गंदे मजाक का ही परिणाम है। उस दिन सियार को भूखे ही रहना पड़ा। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जो दूसरों को तकलीफ देते हैं उन्हें भी तकलीफ मिलती है। धन्यवाद।
0: विभांशु के लिए जोरदार तालियां। अच्छा बच्चों ये बताइए कि चॉकलेट किसे किसे पसंद है?
1: मुझे।
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ।
0: तो चॉकलेट पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि चॉकलेट की कहानी आपको नहीं पता होगी। पता है?
1: नहीं।
0: नहीं पता है? तो चलिए काजल लेकर आई है आपके लिए चॉकलेट की आत्मकथा।
4: हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी चॉकलेट। नमस्ते छोटे दोस्तों, क्या आप मुझे पहचानते हैं? अरे हाँ, मुझे कौन नहीं जानता। मैं वही हूँ जिसे देखकर आपकी मम्मी पापा से प्लीज़ एक और वाली मिन्नतें शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपकी प्यारी चॉकलेट। क्या आप जानना चाहेंगे कि मेरा जन्म कहाँ हुआ? मेरी कहानी बहुत पुरानी है। मेरा जन्म पेड़ों पर लगे बड़े बड़े फलों कोको पाइट्स के अंदर छोटे छोटे बीजों के रूप में हुआ था। पहले तो मैं बहुत कड़वी थी, लेकिन मुझे खूब भुना गया, पीसा गया और मुझ में दूध चीनी और ढेर सारा प्यार मिलाया गया, तब जाकर मैं इतनी मीठी और चमकदार बनी। जन्म से लेके दुकान तक का सफ़र, मशीनों से निकालकर मुझे एक रंग बिरंगी ड्रेस पहनाई गई, जिसे आप रैपर कहते हैं। फिर मुझे सुंदर सी दुकान के शीशे वाले डिब्बे में रखा गया। वहाँ मैं रोज इंतजार करती थी कि एक कोई प्यारा सा बच्चा आए और मुझे अपने घर ले जाए। आपके साथ मेरी दोस्ती, जब आप मुझे खरीदते हैं तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। मुझे फ्रिज की ठंडक बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही आप मुझे अपने हाथों में लेते हैं, आपकी गर्माहट से मैं पिघलने लगती हूँ। जब आप मुझे खाते हैं और आपकी आँखों में जो चमक आती है, वही मेरा असली इनाम है। अब मेरी एक छोटी सी विनती है दोस्तों, मैं आपकी दोस्त हूँ और आपको खुशी देना चाहती हूँ, लेकिन याद रखना, मुझे बहुत ज़्यादा मत खाना, वरना आपके छोटे छोटे दांतों में कीड़े लग सकते हैं। मुझे खाने के बाद कुल्ला करना और ब्रश करना मत भूलना। और हाँ, मेरा जो रंगीन कपड़ा है, उसे आप इधर उधर मत फेंकना, उसे हमेशा डस्टबिन में ही डालना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपकी अगली छोटी सी जीत पर। तब तक के लिए मीठे रहें और मुस्कुराते रहें।
0: क्या बात है, चॉकलेट की आत्मकथा तो सुन के चॉकलेट खाने का आप लोग को भी मन कर रहा है ना?
1: हाँ दीदी।
0: तो चलिए चॉकलेट हम खाएंगे बाद में, पहले हम कर लेते हैं मस्ती यहाँ पे। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि आपको घर में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है फैमिली मेंबर्स में?
1: मम्मी।
0: आपको?
5: मुझे पापा।
0: और आपको?
6: मुझे तो मेरी दादी प्यार करती हैं सबसे ज्यादा।
0: दादी प्यार करती हैं। दादी का प्यार तो भाई सबके लिए बहुत अनमोल होता है, क्योंकि दादी जब हमारे साथ होती हैं, हमें लगता है कि दादी जो बात बताएंगी वो शायद हमारे घर में हमें कोई नहीं बता पाएगा, है ना?
6: हाँ दीदी।
0: ये बताइए कि दादी आपको प्यार करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि दादी आपको स्पेशल क्या आपके लिए करती हैं?
6: वो मुझे खाने की चीजें देती हैं, अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाती हैं।
0: और अगर मान लीजिए कि दादी हमारी गुस्सा हो जाती हैं, तो फिर कैसा लगता है?
6: मुझे तो बहुत बुरा लगता है, मैं उन्हें मना ही नहीं पाती।
0: तो दादी को मनाने के लिए ना, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, एक गाना है, सुना जाए?
6: हाँ दीदी।
0: तो चलिए हम लोग गा भी लेते हैं साथ में।
1: दादी, दादी।

0: बच्चों, दादी अम्मा के इस प्यारे से गीत के बाद अब शुरू होने वाला है सिलसिला हंसने का हंसाने का। आ रही है साकिरा आप सबको गुदगुदाने अपने चुटकुलों के साथ।
1: हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे से चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टीचर, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? स्टूडेंट, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। एक रात एक घर में चोर घुस आया, खटपट सुनकर मालिक की आंख खुल गई। मालिक, कौन है? चोर, मियाऊ। मालिक, कौन है? चोर, मियाऊ। मालिक, कौन है? चोर, अबे बिल्ली हूँ बिल्ली। टीचर, पानी में रहने वाले पांच जीवों के नाम बताओ। स्टूडेंट, मेंढक। टीचर, वाह वाह गुड, बाकी चार और बोलो। स्टूडेंट, सर उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन और उसका भाई। टीचर, इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। स्टूडेंट, मैम मैं तो लोहे से भी पानी निकाल दूँ। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, मैम हैंडपम्प से। टीचर, अगर कोई स्कूल के सामने बॉम्ब रख जाए तो तुम क्या करोगे? स्टूडेंट, मैम एक दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक, वरना स्टाफ रूम में जाके रख देंगे। टीचर और चिंटू। टीचर, चिंटू होमवर्क क्यों नहीं किया? चिंटू, मैम मैं जब पढ़ने बैठा तो लाइट चली गई। टीचर, तो लाइट आने के बाद क्यों नहीं पढ़े? चिंटू, बाद में मैंने इस डर से नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे बैठने के बाद कहीं फिर से लाइट न चली जाए। परीक्षा का डर। पापा, बेटा अगर इस बार परीक्षा में अच्छे नंबर आए तो तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज मिलेगी। बेटा, क्या मिलेगी? पापा, तुम्हारे पास होने की खबर।
0: अब आ रहे हैं विभांशु, क्या सुनाने वाले हैं आप?
2: मैं आपको कहानी चींटी और टिड्डे की सुनाने जा रहा हूँ। एक बगीचे में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे। यह बात वसंत की है। टिड्डा धूप में खेलने, गाने और नाचने का खूब आनंद उठा रहा था, लेकिन चींटी बहुत मेहनती थी। वह अनाज का एक एक दाना अपने घर में जमा कर रही थी और उसे अपने घर में रख रही थी। टिड्डे को समझ में नहीं आ रहा था कि चींटी ऐसा क्यों कर रही है। टिड्डे ने चींटी से कहा, अरे चींटी, तुम बाहर क्यों नहीं आती और मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? चींटी ने कहा, मैं नहीं खेल सकती, मैं सर्दियों के लिए भोजन जमा कर रही हूँ ताकि सर्दियों में कुछ खा पाऊँ। टिड्डा चींटी के ऊपर हंसा और कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी यहाँ पे बहुत सारा भोजन है, और खेलने लगा। चींटी अपना काम करने लगी, वह कठिन परिश्रम से अपना भोजन जमा कर रही थी। कुछ दिनों में सर्दियों का मौसम आ गया। टिड्डा को खाने के लिए एक भी अनाज का दाना नहीं मिल पा रहा था। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। तब उसे समझ में आया कि चींटी इतना मेहनत क्यों कर रही थी और उसे अपने गलती का एहसास हो गया। सीख, कुछ कार्यों को हमें वक्त से पहले ही कर लेना चाहिए। धन्यवाद।
0: बहुत ही अच्छी कहानी बच्चों, जोरदार तालियां विभांशु के लिए। तो भाई अब हम आते हैं अंशिका के पास, ये फिर लेकर आई हैं आप सबके लिए ये गीत।

0: जरूर।
1: बहुत सुंदर। तो हमें कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो भी हम करें सही करें, ईमानदारी से करें, ताकि हम सच्चे मार्ग पे आगे बढ़ सकें और हम सफल हो सकें अपने जीवन में। ठीक है?
0: ठीक है दीदी।
1: अब हम आते हैं रोशनी के पास, क्योंकि भाई ये लेकर आई हैं पहेलियां आप सबके दिमाग का टेस्ट लेने के लिए। तो तैयार हैं आप लोग?
2: हाँ दीदी।
3: हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी से कुछ छोटे छोटे पहेलियां पूछने जा रही हूँ। कौन सा चीज है जो सोने की है पर सुनार की दुकान पर मिलती नहीं?
2: सोने की बिस्तर।
3: सही जवाब। तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान।
4: नमक।
0: अरे भाई, उल्टा सीधा।
4: जहाज।
3: सही जवाब, जहाज। काला रंग मेरी शान, सबको मैं देता हूँ ज्ञान। शिक्षक करते मुझ पर काम, नाम बताकर बनो महान।
0: पेन।
4: अरे नहीं, इसका सही जवाब होगा ब्लैक बोर्ड।
3: सही जवाब। बूझो भैया एक पहेली, जब काटो तो नई नवेली। क्या हो सकता है इसका जवाब?
0: पेंसिल।
3: सही जवाब। गोल है पर गेंद नहीं, पूछ है पर पशु नहीं, पूछ पकड़ कर खेले बच्चे, फिर भी मेरे आंसू न निकले।
4: अरे ये तो समझ में ही नहीं आया, फिर से पूछो।
3: गोल है पर गेंद नहीं, पूछ है पर पशु नहीं, पूछ पकड़ कर खेले बच्चे, फिर भी मेरे आंसू न निकले।
4: अरे हाँ याद आया, गुब्बारा।
3: सही जवाब। वो क्या है जिसे इस्तेमाल करने से पहले तोड़ना पड़ता है?
4: तोड़ना पड़ता है? हाँ अंडा।
3: सही जवाब। सफेद मुर्गी हरी पूछ, तुझे न आए तो नानी से पूछ।
4: नानी से पूछ? अब नानी के पास कैसे जाएं? मूली।
3: सही जवाब, मूली। जो आता है पर कभी पहुंचता नहीं।
4: पहुंचता नहीं।
3: सही जवाब, कल।
4: अच्छा कल।
3: जल से भरा एक मटका, आसमान में है लटका। बोलो बोलो।
4: आसमान में लटका?
3: बताओ बताओ, सोचो।
0: नहीं मालूम।
3: सही जवाब, नारियल।
1: भाई दिमाग का ताला खोलिए आप लोग और जल्दी जल्दी सोचिए और बताइए।
3: ऐसी कौन सी चीज है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता? सोचो सोचो।
5: हो सकती है?
6: अरे हाँ, आपका ज्ञान।
3: सही जवाब। वह क्या है जो एक व्यक्ति को दो बनाता है? सोचो
6: तो
3: सोचो। इसका सही जवाब है आईना। हूँ मैं ऐसा अंधेरा जो रोशनी से बने।
4: क्या हो सकता है इसका?
3: सोचो सोचो।
4: मुझे तो लगता है परछाई।
3: सही जवाब, परछाई। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास पंख नहीं है फिर भी उड़ती है?
0: एरोप्लेन।
3: गलत जवाब।
0: फिर क्या हो सकता है इसका उत्तर?
3: पतंग। मुंह में दांत बहुत ही सारे, फिर भी खाता नहीं बेचारा।
4: क्या हो सकता है इसका?
3: सोचो सोचो। कंघी। सही जवाब। मुंह खोलता है फिर भी बात नहीं करता।
4: मुंह खोलता है और बात नहीं करता?
3: हाँ, मुंह खोलता है और बात नहीं करता।
4: अरे हाँ, दरवाजा।
3: सही जवाब, दरवाजा। जितना निकालो उतना ही बढ़ेगा।
0: क्या हो सकता है?
1: सोचिए सोचिए, क्या है भाई?
3: सही जवाब, गड्ढा है। कौन सी चीज है जिसके चार पैर हैं लेकिन फिर भी वह चल नहीं सकती?
4: चार पैर है और चल नहीं सकती?
3: हाँ।
4: शायद मेज।
3: हाँ सही जवाब। कौन सी चीज है कभी सड़ती नहीं?
4: ये तो हमें नहीं पता।
3: सोचो।
0: पौधा।
3: गलत जवाब। शहद। सही जवाब, धन्यवाद।
1: बच्चों इस पहेली के बाद चलिए हम सुनते हैं गाना। सुना जाए?
2: हाँ दीदी।
1: तो कौन सा सुना जाए?
0: नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे।
1: तो ठीक है, तो पहले हम लोग गाएंगे तब सुनेंगे। तो चलिए गाइए।

0: बुद्धि में क्या है।
1: तो बच्चों, इस गीत के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ। जय हिंद बच्चों।
2: जय हिंद।
1: आज के बाल मंच कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपांकर मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे बाल मंच, जिसे लेकर आई थी रंजना मिश्रा। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने सुहाने।

ये गीत था फिल्म जानवर से, जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। संगीत दिया था आनंद आनंद ने और गीत के बोल लिखे थे समीर ने।

ये गीत था फिल्म दिल से से, जिसे गाया था उदित नारायण ने, संगीत था ए आर रहमान का और गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने।

होटल फिल्म के इस गीत को गाया था आशा भोसले और मनहर उदास ने। संगीत था उषा खन्ना का और गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने।

कभी खुशी कभी गम इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति, बाबुल सुप्रियो और उषा उत्तुप ने। संगीतकार थे संदेश शांडिल्य और गीत के बोल लिखे थे बंकिम चंद चैटर्जी ने।

0: एआर रहमान और साथियों के द्वारा गाए लगान फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, कुछ देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं तलत अजीज।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे तलत अजीज। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: लखनऊ है इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत मुनक़िद एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां वजीर आला ने अपने खिताब में कहा,
2: केंद्रीय संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल जिसने अपनी स्थापना काल के से लेकर के अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में देश के अंदर केंद्र के साथ साथ 22 राज्यों में अपनी सरकार अपने दम पर अपनी विचारधारा को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस राजनीतिक दल के गोरखपुर जनपद के विशेष प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मैं आप सबका इस पूरे आयोजन के प्रति मैं जिला इकाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
1: इससे कबल वजीर आला ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िद जनता दर्शन प्रोग्राम में मुख्तलिफ अज़ला से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी। इस दौरान वजीर आला ने अफसरान को अहकाम दिए कि वो पूरी हसासियत से ये यकीनी करें कि बगैर किसी तफरीक के सबको इंसाफ मिले और जल्दी उनकी दिक्कतों का तस्फिया किया जाए। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए एजाजिया तकसीम को लेकर आज पूरी रियासत में उनके एजाज में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में मुनक़िद रियासती सतही जलसे में वजीर आला योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के एजाज में इजाफा शुदा एजाजिया तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। वाज़ेह रहे कि इनका एजाजिया 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये फी माह करने का फैसला किया गया है। इजाफा शुदा एजाजिया 1 अप्रैल से नाफिज किया गया है। रियासत में जारी डिजिटल मर्दमशुमारी के पहले मरहले के तहत खुदशुमारी का अमल 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाले इस अमल में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में खुदशुमारी का डिजिटल फॉर्म भरा। वजीर आला ने रियासती आवाम से इस अमल में शराकत दारी दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा कि यह मुल्क की पहली मुकम्मल तौर से डिजिटल मर्दमशुमारी है। इसका खास मकसद सही एदादोशुमार जुटाकर मुल्क की तरक्की और बहबूदकारी स्कीमों की आउटलाइन तैयार करना है। मरकजी सानवी तालीम बोर्ड CBSE ने तालीमी सेशन 2025-26 के दर्जा 12 के बोर्ड इम्तिहान के नतायज के ऐलान होने के बाद तलबा और तालिबात के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का ऐलान किया है। बोर्ड ने इस मरतबा तशखीस के अमल को और ज्यादा सही और शफाफ बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है।
1: CBSE ने 1 जुलाई

निकलते हैं तो दूरियां अपने आप मिट जाती हैं, और आज का आधुनिक संचार तंत्र इसी भावना को साकार कर रहा है। बहनों, तकनीक न केवल दुनिया को डिजिटल नहीं बनाया, बल्कि इंसानों को भावनात्मक रूप से भी पहले से अधिक करीब ला दिया है। सोचिए, एक समय था जब अपनों की खबर पाने के लिए दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, चिट्ठियों की वह बेचैनी, डाकिए का इंतजार और दूर बैठे परिवार की आवाज़ सुनने की लालसा, यह सब हमारी पुरानी यादों का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया ने संचार को इतना आसान बना दिया कि दुनिया अब सचमुच ग्लोबल फैमिली जैसी महसूस होती है। बहनों, आज संचार तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। शिक्षा हो या चिकित्सा, व्यापार हो या सुरक्षा, हर क्षेत्र में दूरसंचार ने नई क्रांति ला दी है। ऑनलाइन शिक्षा ने गांव-गांव तक ज्ञान पहुंचाया, टेलीमेडिसिन ने दूर बैठे डॉक्टर से सलाह संभव बनाई, डिजिटल सेवाओं ने आम लोगों के जीवन को सरल बनाया, और सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का मंच भी दिया। विशेष रूप से महिलाओं के लिए तकनीक एक नई शक्ति बनकर उभरी है। आज महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन व्यवसाय कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई से लेकर ट्यूशन तक का काम भी चला रही हैं। बेटियां ऑनलाइन कोर्स कर रही हैं, गृहिणियां डिजिटल पेमेंट सीख रही हैं, और महिलाएं सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। तकनीक ने उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों दिए हैं। लेकिन बहनों, तकनीक तभी सार्थक है जब उसका उपयोग मानवता और समाज के हित में किया जाए। हमें डिजिटल माध्यमों का उपयोग सकारात्मकता फैलाने, ज्ञान बढ़ाने और लोगों को जोड़ने के लिए करना चाहिए। आज के दौर में यह आवश्यक है कि हम डिजिटल सुरक्षा और जिम्मेदारी को समझें, फर्जी सूचनाओं से बचें, हर फॉरवर्ड को सच मत मानिए, सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करें और तकनीक को जीवन का सहायक बनाएं, बोझ नहीं। विश्व दूरसंचार दिवस हमें यह संदेश देता है कि संवाद ही विकास की सबसे बड़ी शक्ति है। जब विचार जुड़ते हैं तभी समाज आगे बढ़ता है, और जब लोग जुड़ते हैं तभी राष्ट्र मजबूत बनता है। तो आइए आज इस विशेष अवसर पर हम सब संकल्प लें, तकनीक का उपयोग सकारात्मक सोच, जागरूकता और मानवता के कल्याण के लिए करेंगे। और रिश्तों की सबसे खूबसूरत डोर होती है संवाद। जब दिलों में अपनापन हो और भावनाओं में सच्चाई, तब दूरियां भी मायने नहीं रखती। विश्व दूरसंचार दिवस हमें यही संदेश देता है कि संचार केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का माध्यम है। तकनीक ने हमें अपनों के और करीब ला दिया है, और इसी खूबसूरत एहसास को व्यक्त करता है यह मधुर गीत।

बहनों, एक दूजे फिल्म का ये गीत जिसे अपनी खूबसूरत आवाज़ लता जी ने दी थी। बहुत ही बंधनों में बंधा ये गीत बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। और अब बातें विश्व हाइपरटेंशन दिवस की और महिलाओं में बढ़ता तनाव। बहनों, स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी, बढ़ता तनाव, बदलती जीवन शैली और अनियमित खान पान ने हमारे स्वास्थ्य के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इन्हीं चुनौतियों में एक गंभीर समस्या है, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बहनों, विश्व हाइपरटेंशन दिवस के अवसर पर आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीपी नियंत्रण, महिलाओं में तनाव, होम योगा, लो साल्ट रेसिपीज और गृहिणी प्रबंधन से जुड़े समय प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर। बहनों, बीपी नियंत्रण और महिलाओं में तनाव। आज की महिला सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रही, वो ऑफिस संभाल रही हैं, बच्चों की पढ़ाई देख रही हैं, बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं और रिश्तों को भी सहेज कर चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच वह अक्सर एक काम भूल जाती हैं और वह है खुद का ख्याल रखना। बहनों, लगातार मानसिक तनाव, पर्याप्त आराम की कमी, समय पर भोजन न करना और स्वयं के लिए समय न निकाल पाना, ये सभी कारण महिलाओं में हाई बीपी की समस्या को तेजी से बढ़ा रहे हैं। बहनों, उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण कई बार शुरुआती समय में दिखाई नहीं देते। न तेज दर्द, सिर दर्द, न थकान, न कोई अस्पष्ट संकेत, लेकिन धीरे धीरे यह हृदय रोग, स्ट्रोक

किडनी फेल्योर और आँखों की समस्या जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन जाता है। बहनों, सामान्य तौर पर हम लोगों का बीपी 120 ऊपर का और 80 नीचे का होना चाहिए, इसी को संतुलित रक्तचाप माना जाता है। यदि यह लगातार 140 और 90 से ऊपर रहने लगे तो सावधानी आवश्यक हो जाती है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब ये समस्या सिर्फ 50-60 साल की महिलाओं तक सीमित नहीं रह गई है, अब यह 30-35 साल की महिलाएं भी इसकी चपेट में आ जा रही हैं। कारण एक ही है, तनाव और जीवन शैली का असंतुलन। बहनों, अब सवाल है इसे कैसे नियंत्रित करें। डॉक्टर और विशेषज्ञ मानते हैं कि दवा से पहले दिनचर्या बदलना बहुत ज़रूरी है। तो बहनों, नियमित इसका जांच जरूर करवाएं। 30 साल के बाद हर महिला को महीने में एक बार बीपी जरूर चेक करवाना चाहिए। घर में डिजिटल मशीन रख सकती हैं, क्योंकि उससे आप हर दिन अपना सुबह उठिए और अपना जांच कर लीजिए कि कितना है हमारा बीपी, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। नमक कम करें, एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाएं। हरी सब्जी, फल, सलाद, दही और पर्याप्त पानी को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अचार, पापड़, प्रोसेस्ड फूड और बाहर के खाने से बिल्कुल भी दूरी बना लें, क्योंकि यह शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। कम से कम रोज़ाना 7 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि कम नींद से शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे बीपी का बढ़ना लाजमी हो जाता है। रोज़ 20 से 30 मिनट योग करने से मानसिक तनाव कम होता है और आपका रक्तचाप नियंत्रित रहता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम और 5 मिनट का ध्यान आपके दिल और दिमाग दोनों को शांत रखता है। बहनों, सब कुछ अपने कंधे पर मत लीजिए, ना कहना भी सीखिए। परिवार के सदस्यों को जिम्मेदारी दीजिए, हर काम किसी न किसी के हिस्से में बांट दीजिए। दिन में 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए, बिना फ़ोन, बिना काम, बस खुद के साथ। यदि हर घर की महिला स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार भी स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। महिला घर की धुरी होती हैं, जब धुरी मजबूत होगी तभी पूरा घर संतुलित भी रहेगा। बहनों, आज विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर एक संकल्प जरूर लीजिए कि मैं अपने बीपी को जानूंगी, समझूंगी और उसे नियंत्रण में रखूंगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। बहनों, जीवन हर दिन हमें एक नई शुरुआत का अवसर भी देता है। ज़रूरत है स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालने और मुस्कुराने की, अपने मन को हल्का रखने की और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की। और इन्हीं खूबसूरत भावनाओं को व्यक्त करता है यह सदाबहार गीत।

बहनों, अभी मैं बात कर रही थी कि कैसे तनाव और अनियमित दिनचर्या महिलाओं में हाई बीपी का कारण बन रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका सबसे सरल, सस्ता और असरदार उपाय आपके घर में ही मौजूद है, और वो है योग। बहनों, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने की कला है। ये सिर्फ शरीर को मोड़ना तोड़ना नहीं है। योग का मतलब जोड़ना शरीर को मन से, मन को सांस से और सांस को वर्तमान पल से जोड़ना है। योग शरीर को लचीला बनाता है। सुबह उठते ही जो कमर और कंधे जकड़े हुए लगते हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। योग तनाव कम करता है क्योंकि जब आप सांस पर ध्यान देती हैं तो दिमाग बाहर की चिंताओं से हटकर अंदर आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, योग मन को शांति देता है, वो शांति जो बाहर की भीड़ में नहीं मिलती। अब बात करती हूँ कुछ आसान योगासनों की जो आप घर पर बिना किसी मदद के कर सकती हैं। ताड़ासन। बहनों, सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए और शरीर को हल्का खींचिए। ये आपके रीढ़ को सीधा करता है, शरीर में आलस्य दूर करता है और आपके रक्त संचार को बढ़ाता है। सिर्फ एक मिनट कीजिए, थकान गायब। वज्रासन। खाना खाने के बाद 5 मिनट इस मुद्रा में बैठिए। घुटने के बल बैठें, एड़ियों पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें। ये पाचन सुधारता है और पेट को हल्का रखता है। हाई बीपी में ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये मन को शांत भी करता है। बहनों, भुजंगासन। इसमें आपको पेट के बल लेटकर दोनों हाथों के सहारे अपनी छाती को ऊपर उठाएं। ये रीढ़ को मजबूत बनाता है और कमर दर्द कम करता है और हमारे फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाता है। अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नथुना बंद कीजिए, बाएं से सांस लीजिए, फिर बाएं को बंद करके दाएं से सांस छोड़िए। 5 मिनट कीजिए, ये आपके तनाव को कम करेगा और आपके दिमाग को शांत भी करता है, आपके बीपी को भी बैलेंस करेगा। बहनों, इसी तरह कपाल भाती आप कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम भी कीजिए, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ करता है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है। लेकिन हाई बीपी या हृदय रोग में इसे धीरे धीरे और डॉक्टर की सलाह से ही करें। बहनों, इन आसान अभ्यासों से नींद अच्छी आती है। रात को बिस्तर पर जाते ही नींद न आने की समस्या कम हो जाती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब शरीर हल्का होता है तो मन भी हमारा हल्का होता है, और सबसे ज़रूरी, अपने मन को सकारात्मक रखिए। विशेष रूप से महिलाओं के लिए योग बेहद लाभकारी माना जाता है। बहनों, ये मत सोचिए कि मेरे पास समय नहीं है। सुबह 6 बजे उठिए और 15 मिनट आप योग जरूर करें, पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी। रात 9 बजे 10 मिनट ध्यान करें, गहरी और सुकून भरी। योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन से ही स्वस्थ परिवार भी बनता है। बहनों, मैं रोज़ खुद के लिए 15 मिनट निकालूंगी, ये आप जरूर गांठ बांध लीजिए। ये 15 मिनट सिर्फ मेरे हैं। योग के बारे में ये बातें आपको घर पर आजमाने के लिए प्रेरित करेंगी। बहनों, योग के साथ साथ स्वस्थ जीवन की शुरुआत हमारी रसोई से भी होती है। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल हाई बीपी की समस्या तेजी से बढ़ रही है और इसका बड़ा कारण है भोजन में अधिक नमक का सेवन। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी और सही खान पान अपना कर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। कम नमक वाला भोजन भी स्वादिष्ट और पौष्टिक हो सकता है। बहनों, मूंग दाल, चीला, वेजिटेबल सूप, ओट्स, उपमा, अंकुरित अनाज और ताजी सलाद जैसे लो साल्ट रेसिपीज शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद करती है।
भोजन में नींबू, पुदीना, धनिया और हल्के मसालों का उपयोग स्वाद को भी बनाए रखता है और स्वास्थ्य का भी आपके ध्यान रखता है। तो आइए बहनों, स्वाद के साथ स्वास्थ्य को भी ख्याल रखें और अपने परिवार को हेल्दी जीवन शैली की ओर प्रेरित करें। जीवन कभी सुख तो कभी संघर्ष का नाम है और हर दिन नई जिम्मेदारियां, नई अनुभव और नई चुनौतियों लेकर हमारे सामने आता है। एक महिला अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन भर न जाने कितनी भूमिकाएं निभाती हैं, लेकिन जीवन की इस भाग दौड़ में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भी बहुत ज़रूरी है। बहनों, मुस्कुराहट, अपनापन, परिवार का साथ और मन की शांति, यही जीवन की असली खूबसूरती है। और जीवन के इन्हीं सरल, सच्चे और भावपूर्ण एहसासों को खूबसूरती से बयां करता है यह सदाबहार गीत।

0: मैं हूँ संध्या त्रिपाठी, आकाशवाणी से अगले रविवार फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुद से प्यार करें। नमस्कार।
1: बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत, जिसे लेकर आई थी संध्या त्रिपाठी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
4: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज किसान भाई सुनेंगे बातचीत विषय।

0: खरीफ सब्जियों की प्रजातियां। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, बातचीत कर रहे हैं विनय कुमार।
1: सब्जी का उत्पादन बारहमास कईल जाला, खास तौर से जब खरीफ ऋतु में सब्जी लगावला का बात आवेले तो एकर तैयारी पहले से करे के पड़ी, काहे कि बहुत ऐसा सब्जी बाड़ी जौन जायद में भी उत्पन्न होली और उहे सब्जी बा तवन खरीफ में भी लगेला। प्रजाति अलग हो सकेला, ओकरे प्रजाति का विशेषता अलग हो सकेला, लगावला आ तैयारी का समय अलग अलग हो सकेला, लेकिन जौन खरीफ में सब्जी लगावल जाला ओकर प्रजाति का है। बहुत लोग हम कि जायद में लगाए वाली खरीफ में, खरीफ वाला जायद में यह तरह से लगा देना, पौधा तो खूब बढ़ेला लेकिन उसमें बतिया ना लगी, अगर बतिया लगतो बा तो मर गई या कम उत्पादन मिलल। तो अभी पर्याप्त समय बा कि खरीफ में कौन कौन सब्जी का खेती करे के चाही और बढ़िया प्रजात का है। डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव कृषि विज्ञान केंद्र मलहना जनपद देवरिया से फोन लाइन पर जुड़ल हूँ आ एकरे बारे में विधिवत जानकारी डॉक्टर साहब दें।
2: ये देखा गया कि जो हम ज्यादातर वो सब्जियां जो जायद में होती हैं वही खरीफ में भी होती हैं। तो जायद में और खरीफ में प्रजातियां कोई किसी किसी की कोई प्रजाति अलग है, तो करीब करीब प्रजातियां वही यूज होती हैं, वही प्रयोग की जाती हैं। अब ये देखा जा रहा है कि जो खरीफ मौसम आने वाला है इसमें जो प्रमुख फसलें हमारी अब लगाई जाएंगी उसमें आपको भिंडी है, बोड़ा या जिसको हम लोबिया कहते हैं, और कद्दू वर्गीय सब्जी सारी, जैसे लौकी है, कोहड़ा है, तरोई है, करेला है, खीरा है, ये सारी जो है सब्जियां खरीफ मौसम में फिर लगाई जाएंगी। इसमें अगर आप देखा जाए जो अच्छी प्रजातियों को, ज़्यादातर किसानों को अगर देखा जाए तो बाजार से संकर प्रजाति का ही उपयोग करते हैं और उसका उपयोग करके और अपने खेत पे लगाते हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी उनको संकर प्रजाति सही नहीं मिलती और उसको उनको समस्या होने लगती है और उसका बीज जो है वो अपने पास नहीं रह सकते। तो आज हम कुछ ऐसी प्रजातियों का चर्चा करेंगे जो प्रजातियां आपको संकर प्रजातियों के आसपास की ही उपज देती हैं और उनका अगर आप बीज बना लेते हैं तो आप उनको अपने अगले सीजन में लगा भी सकते हैं। इस दिशा में जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी है, जिसी का ये कृषि विज्ञान केंद्र देवरिया वहीं से गौरन होता है, वहीं से इसका जो है प्रशासनिक नियंत्रण है, वहाँ से जो निकली हुई प्रजातियाँ जो पिछले कई सालों से अथक परिश्रम द्वारा वैज्ञानिकों के और सब्जियों की नई प्रजातियाँ निकाली गई उन पर हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं बोड़ा या लोबिया पे। लोबिया की प्रजाति देखिए आप पूरे जो है अपने भारत में और खास करके अपने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया में सबसे लोकप्रिय जो प्रजाति है वो काशी कंचन के नाम से जानी जा रही है। काशी कंचन जो है बौनी किस्म की प्रजाति है जिसके 60 सेंटीमीटर करीब होती है ऊंचाई और उस पर 30 से 45 सेंटीमीटर लंबे जो है बोड़े लगते हैं, कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं और इनकी पैदावार अच्छी होती है। और सबसे अच्छी बात है कि कम दिन में ये 45 से 55 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर करीब फूल आता है और 54-55 दिन में हमें हार्वेस्ट शुरू हो जाती है और 2-3 फसल लेकर के 70-80 दिन के अंदर खाली करके हम चाहे तो तुरंत अगली फसल जो है वो ले सकते हैं। जैसे अगर हम सब्जी की खेती की बात हो रही है तो अगर सब्जी खेती लें तो हम बोड़ा लगा करके और उसके बाद तुरंत हम मटर की खेती या फूल गोभी की खेती करके हम 2 फसल आसानी से लेकर के लाभ ले सकते हैं। दूसरी प्रजाति भी अभी निकली हुई है काशी निधि, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। काशी निधि की फलियां अपेक्षाकृत थोड़ी सी बड़ी हैं और मुलायम है, इसमें बीज थोड़ा कम बनता है इसलिए रेशे की जो है मात्रा कम है। तो इसको आप काशी निधि और काशी कंचन दोनों प्रजातियों को लोबिया के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरी फसल आ रही है भिंडी। भिंडी के लिए काशी क्रांति और काशी प्रगति, ये 2 अच्छी प्रजातियां जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, अच्छा उत्पादन दे रही हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। ये भी अच्छी हैं, इसमें भी आप 50 से 55 दिन के अंदर जो है हार्वेस्टिंग हो जाती है और अर्ली एकदम आपको भिंडी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर हम बात करें तो कद्दू वर्गीय सब्जी में अगर हम कोहड़ा लेते हैं, कोहड़ा, तो कोहड़े में भारतीय सब्जी अनुसंधान द्वारा संस्थान द्वारा विकसित जो है काशी हरित प्रजाति जो छोटी 1.5 से 3 किलो की फसल होती है और उसकी जो लतर है, जो बेल है वो भी छोटी होती है और एक बेल में जो है 4 से 5 फल बढ़िया से मिल जाते हैं, उसको थोड़ा सा नज़दीक लगा करके बढ़िया करके तो आपको एक जो हरा कोहड़ा जो बाजार में आता है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त प्रजाति है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें लौकी, लौकी में जो है अगर आप प्रजाति के देखें तो काशी गंगा एक प्रजाति है, और अगर हम काशी बहार एक संकर प्रजाति भी विकसित की है कि जो आप हाइब्रिड की बात करते हैं किसान, तो उसमें जो है वो एक काशी बहार प्रजाति का भी उपयोग कर सकते हैं। और अन्य जो है जैसे कि हमारा एक बहुत ही थोड़ा सा अलग टाइप का खेती है पेठा कद्दू की, कुछ एरिया में पेठा कद्दू की खेती बढ़िया की जाती है, और बरसात में जहाँ पे आपके खेत में थोड़ा ऊंचास हो और बहुत बढ़िया खेत नहीं है आपका, जैसे पुराना टीला हो या इस तरह का या कुछ, तो वहाँ पे आप अगर आप छपरावा कद्दू जिसको देहात में कहते हैं पेठा कद्दू की खेती कर लें, उसके लिए काशी उज्ज्वल एक प्रजाति है और उसको आप लेकर के लगा सकते हैं, और काशी धवल, दो प्रजातियां जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं। अब अगर हम आते हैं करेला में, करेला में देखा जाए तो दो तीन प्रजातियां जो है, एक बरसात के लिए जो झालरी प्रजाति जिसको कहते हैं या जौनपरी लोकल जो बड़ी वाली प्रजाति है उसको ज्यादा डिमांड करते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। नेनुआ, नेनुआ में जो है वो जो दो तरह की नेनुआ होती है, एक कुछ हरी होती है एक सफेद होती है, तो सफेद नेनुआ में और सफेद नेनुआ के लिए काशी ज्योति और हरे नेनुआ में कुछ अच्छी प्रजातियां निकली हैं जैसे काशी सौम्या और काशी रक्षिता, इसमें एक संकर भी है और इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से खीरा में, खीरा में जो प्रजाति है उसके लिए आप लोकल प्रजाति का उपयोग करें जो हो, और एक स्वर्ण अगेती नाम की प्रजाति है उसका उपयोग किया जा सकता है। एक नई प्रजाति अभी और वहाँ से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से अभी डेवलप की जा रही है, विकसित की जा रही है, उसके बीज भी आपको अगले साल से मिल सकते हैं। और एक सत्तुतिया होता है जो इस अपने इस क्षेत्र की खास करके पूर्वांचल की बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है, छोटी वाली सत्तुतिया गुच्छे में फैलती है, उसके लिए काशी खुशी नाम की प्रजाति है, आप इसको लेकर के लगा सकते हैं। तो ये सारी जो प्रजातियां हैं ये सीधे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से ली जा सकती हैं, या उसका जो रीजनल सेंटर है उसका जो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान उसका है कुशीनगर में, सरगटिया कुशीनगर में, वहां से ले सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र देवरिया जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के नियंत्रण में ही है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप इन तीनों जगह से कहीं से भी इसके बीज ले सकते हैं। आप सीधे जो है निदेशक महोदय को चिट्ठी लिख करके या मेल लेकर के आप अपने पास भी बीज मंगा सकते हैं। तो ये कुछ प्रजातियां थी जिन जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित है, इनका आप उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप इतना अच्छा जानकारी दिलीं कि खरीफ में उगाए वाली सब्जी का प्रजात कौन कौन ह आ एके कैसे प्राप्त कैल जा सकेला, एकर पहचान का ह, एकर विशेषता का ह, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: खेती किसानी कार्यक्रम में आज किसान भाई सुने बातचीत, विषय था खरीफ सब्जियों की प्रजातियां। जानकारी दे रहे थे रजनीश श्रीवास्तव और आपसे बातचीत कर रहे थे विनय कुमार। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार रिले होंगे।

0: and supply flows.
1: Targeting of commercial shipping, endangering civilian crew, impeding freedom of navigation in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. Open and predictable trade flows must be preserved and fragmentation avoided. Coordinated efforts are needed to stabilize energy markets and support countries facing external and fiscal pressures. Strengthening multilateral financial support mechanisms will also be critical in this regard. This crisis underscores the importance of combining immediate response with long-term transformation.
0: His remarks came days after an India-flagged commercial vessel was attacked off the coast of Oman. The World Health Organization, WHO, has declared the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo and Uganda a public health emergency of international concern. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced the decision after more than 300 suspected cases and 88 deaths were reported. WHO, in a social media post, clarified the outbreak does not meet the criteria for a pandemic emergency like COVID-19 and advised against closing international borders. The government has said that the on-screen marking OSM system in the CBSE Class 12 examinations has enhanced transparency and objectivity in the evaluation process. Addressing concerns over the Class 12 results, Secretary, Department of School Education and Literacy, Sanjay Kumar said that some concerns have been raised by the students regarding marking and a slight decline in pass percentage. He said that the welfare of students is of utmost importance and no child should feel they have received less marks than they deserve. The Secretary explained that CBSE has implemented this year, which ensures greater transparency and objectivity in evaluation. The field operations for the house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 have commenced in 5 states and union territories. These states and union territories are Rajasthan, Meghalaya, Maharashtra, Jharkhand and Municipal Corporation of Delhi area in Delhi NCT as part of the ongoing nationwide census exercise. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah termed AI and deep tech as the main pillars of the future economy. Inaugurating the Million Minds Tech Park Phase 1 and Cremi City Campus in Ahmedabad, Gujarat today, he said that India has become a leader in every emerging sector of the world.
2: In the coming 25 years, the sectors that will give direction to the global economy and the global financial system, in all those sectors, India is today marking its strong presence as a founder. And this itself shows that the future of India is very bright. For the future of AI and deep tech, tech parks like these will do a very great job and will also take this forward.
0: Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani on the 31st of May. It will be the 134th episode of the monthly radio program. People can submit their ideas and suggestions for the program through the toll-free number 1-800-117-800. They can also share their input online by the Narendra Modi app or the MyGov open forum. The citizens can also give a missed call on 1922 and follow the link received in SMS to directly give their suggestions to the Prime Minister. Suggestions for the upcoming episode will be accepted until the 29th of this month. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has created history by climbing Mount Everest for a record 32nd time. The 56-year-old climber broke his own record for the highest number of ascents of the world's tallest peak. Born in Solukhumbu district of Nepal's Koshi province, Kami Rita Sherpa began his mountaineering career in 1992 and first climbed Everest in 1994. He completed his 31st ascent on May 27 last year. Meanwhile, Lahakpa Sherpa, popularly known as the Mountain Queen, also extended her own record as the first Nepali woman to summit Everest by completing her 11th successful ascent of the peak. Within days of levying high customs duties on precious metals, the government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. Delhi Metro will run additional train trips to encourage the adoption of the metro over private vehicles. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, said the decision has been taken keeping in view the significant role of public transport in ensuring energy efficiency, economic viability and environmental sustainability in the prevailing circumstances. DMRC said that from tomorrow, 24 additional train trips will be operated every Monday with the deployment of 6 extra trains. The corporation added that the additional services will also be introduced on other days depending upon the requirement. The Railway Ministry has ordered a high-level inquiry into the fire incident involving 2 rear coaches of the Trivandrum New Delhi Rajdhani Express. At around 5:15 this morning, there was fire in 2 rear coaches, which include 1 guard coach and 1 AC 3-tier in Trivandrum New Delhi Rajdhani near Nagda of Kota Division. A major rail accident was averted in Ratlam, Madhya Pradesh this morning. Fire broke out in the B1 coach of the Thiruvananthapuram Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express, train number 12431. The incident took place between Luni Richa and Vikramgarh Alod stations in the Kota division around 5:20 a.m. Ratlam Railway Division's Public Relations Officer Mukesh Kumar informed there has been no casualty in this incident. The cause of the fire is being investigated. The India Meteorological Department IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the day. The Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Maharashtra and northeastern states for the next 2 days. IMD has said Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha may experience heat wave conditions till tomorrow. Severe heat wave grips Madhya Pradesh. Temperature crosses 43 degrees in 15 cities. A report.
3: Madhya Pradesh is reeling under severe heat. Life has become difficult for people. Indore and Ujjain divisions are the worst affected. Yesterday, Khandwa and Nogaon recorded temperatures above 44 degrees Celsius. In 15 cities across the state, the mercury touched 43 degrees or above. According to the IMD, a strong heat wave is likely in Ratlam, Khargone and Khandwa today. Temperature may cross 44 degrees there. Heat wave conditions will also continue in Indore, Ujjain, Sagar, Rewa, Chhatrapur and more than a dozen other districts. The IMD says severe heat will continue across most part of the state till May 19. No rain alert has been issued anywhere today. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: On to sports now. In badminton, world number 4, Indian pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Rolikanando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. In tennis, Ukraine's Alina Svitolina stunned world number 4 Coco Gauff of the US 6-4, 6-7, 6-2 to win the women's title at the Italian Open yesterday. In the men's section, Jannik Sinner will face Norway's Casper Ruud in the final today. The match will start at 8:30 p.m. Indian Standard Time. In IPL cricket, today, Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals at Arun Jaitley Stadium in Delhi. The match will begin at 7:30 p.m. World Hypertension Day is being observed today. The theme for this year is Controlling Hypertension Together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kamirita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
5: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
6: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
5: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
4: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
7: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
4: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब युटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
8: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
4: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
9: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को

0: 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 से राजस्थान

0: रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम। आकाशवाणी खरसाङ केन्द्रमा एफएम 103.5 मेगाहर्जमा साथै श्रोताहरूले हामीलाई आकाशवाणीको नेपाली प्रसारण सेवाबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। र अबको क्रममा यहाँहरूलाई सुनाइरहेछौ केही आधुनिक गीतहरूको प्रस्तुति। प्रथममा स्वीकार्नुहोस् पवन गोलेको स्वरलाई। शब्द अनि संगीत रहेको छ सूरज मुक्तानको।

0: अहिले श्रोताहरूले सुन्नुभयो अनिता गुरुङको स्वरमा आधुनिक गीतको प्रस्तुति। शब्द अनि संगीत रहेको थियो सूरज मोक्तानको। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ आकाशवाणीको नेपाली प्रसारण सेवाबाट, साथै 103.5 मेगाहर्जको तरंगमा। र अबको क्रममा यहाँहरूलाई सुनाइरहेछौ आकाशवाणीको समाचार।
1: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो, दिव्यतम अधिकारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीडेनको दुई दिने भ्रमणमा आज गोथेनबर्ग पुगिरहनु भएको छ। देशमा चलिरहेको जनगणना अन्तर्गत घरहरूको गणनाको लागि पहिलो चरणको काम 5 राज्यमा सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी 31 मेको दिन आकाशवाणीबाट मन की बात कार्यक्रममा पुनः एकपल्ट आफ्ना विचारहरू साझा गर्नुहुनेछ। आइपिएल क्रिकेटमा आज हुने पहिलो म्याच पन्जाब किङ्स अनि रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरू बीच खेलिनेछ। अनि मौसम विभागले अण्डमान अनि निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बङ्गालका पार्वतीय क्षेत्र अनि सिक्किममा भारी वर्षाको अनुमान व्यक्त गरेको छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वीडेनको गोथेनबर्गको दुई दिवसीय यात्रा आजदेखि सुरु भइरहेको छ। श्री मोदीको यो यात्रा स्वीडेनको प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टेन्सनको निमन्त्रणामा भइरहेको छ। 2018 श्री मोदीको स्वीडेन यात्रापछि दुवै देशहरूको सम्बन्ध केवल खरिददार विक्रेतासम्म सीमित नरहेर साझा मूल्य, एक अर्काको खुसी, औद्योगिक समृद्धि अनि साझा विकाससित पनि जुडेको छ। स्वीडेन विश्वको सबैभन्दा नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाहरूमा एक हो अनि गोथेनबर्ग स्वीडेनको औद्योगिक अनि नवाचार केन्द्र हो। अर्कोतर्फ भारतमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा डिजिटल प्रतिभाहरू अनि स्टार्टअपहरू रहेको छ, जसले दुवै देशबीच स्वाभाविक तालमेलको अवसर प्रदान गर्दछ। वर्ष 2019 दुवै देशबीच लिडरसिप ग्रुप फर इन्डस्ट्री ट्रान्जिसन लिड आइटी सुरु गरिएको थियो। यसको उद्देश्य उद्योगहरूमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम्ती गर्नु हो। दुवै देशको प्रधानमन्त्रीहरूले 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 अवधि लिड आइटीको दोस्रो चरणको शुभारम्भ गरेका थिए, जसमा प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, साझा विकास अनि वित्तीय तथा तकनिकी सहायताको लागि एक औद्योगिक मञ्चमाथि जोड दिइएको थियो। भारत युरोपीय संघ मुक्त व्यापार सम्झौताद्वारा दुवै पक्षका लागि अभूतपूर्व बजार उपलब्ध भएको छ। यसद्वारा भारतबाट कपडा, लेदर अर्थात् छाला अनि इन्जिनियरिङ सामानको निर्यातमा भारी वृद्धिलाई बल प्राप्त हुने सम्भावना छ। अर्कोतर्फ युरोपबाट उच्च तकनिकी सेवाहरू अनि निवेशको द्वार खोलिनेछ। दुवै देशले अन्तरिक्ष अन्वेषणको क्षेत्रमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। स्वीडेन भारतको शुक्र अर्बिटर मिसनमा सामेल छ अनि उन्नत वैज्ञानिक उपकरण प्रदान गरिरहेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में संयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। हमारी यह सभा यहीं समाप्त होती है। विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम अपने सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: पिटारा में आज उजाले उनके

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
0: जी जी जी।
1: हाथ पाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह सा भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई
0: हाँ
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
0: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
1: जी जी
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूँ तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटी में जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटा एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी जी जी।
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके।
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले तो, मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखें अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा ये आठ फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब ओरिजिनल जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले, और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत, और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही दोस्त उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी,
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आयशा से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग हैं, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा कह रहे हैं, बोला यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में शुरू में जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मुझे राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया।
0: फिर उन्होंने कहा तो बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फलां क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी,
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूँगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई?
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से, वो तो उस वक्त तक आज भी और उस वक्त भी जिसको नहीं करना वो जाओ भाई दूसरे के पास जाओ, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर जो होना था, 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे, उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन। अगली पिक्चर जो थी मेरे को शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाए।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कर रहे। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम दाग के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिकर बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा।
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे, ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप मिली।

0: अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसे जी से कहा, ये जी वो तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा सारा मुश्किल होता है तुझे, बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तो मैं उससे मिलने गया। बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे। बोला करूँगा, और उसने पिक्चर ले ली। उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले।
0: बहुत नहीं, फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास।
1: अच्छा,
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था। वो कुछ हुआ था ऐसा, मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ,
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है। मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने, आनंद बख्शी और मजरू साहब।
1: बिल्कुल, उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर।
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी।
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसरों ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर, एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो है। हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, अगर साइन में रहता तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे कहा शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलाते थे, शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर,
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तू शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली,
0: हाँ।
1: वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेजे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है रमेश तलवार को ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बचेरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी
1: मराठी में,
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
1: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया। तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदतें फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे,
0: हाँ।
1: एंजॉय करते थे लाइफ को, वो छः महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए,
0: यस
1: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, एक महीने बाद आऊँगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
0: वाह वाह,
1: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
0: पुरानी दोस्ती है ही,
1: वो पापा बुलाता हूं मैं अभी भी गुलजार पापा
0: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख लीजिए आप।
0: बाबा
1: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लग रहा डायलॉग एंड मेमोरी करना, तो स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगेगा कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया, तो उनका नहीं तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रास की फिल्म की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं,
0: हाँ ये कौन है।
1: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे, अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन,
0: ओके
1: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो,
0: उन्होंने ही बोला।
1: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को तो बोले मैं अभी फ़ोन करती हूँ। उन्होंने फ़ोन लगाया, रेखा ने कहा मैं यहाँ व्यू पार्टनर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
0: हाँ
1: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी और कुछ हमारी फिल्मों की एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा जी ऐसा सुना लो लंच खाना खाओगे, मैंने कहा नहीं खा के आ रहा हूँ। अच्छा दो मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
0: डन हो गया।
1: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
0: वाह वाह वाह क्या बात है।
1: मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब साहब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा। शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है वो ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलस्ट्रेटेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
0: वाह वाह वाह।
1: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया, सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चरों में उनके सामने उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपका आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुँच गया, तो वहाँ उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था 420 की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
0: हाँ।
1: गेट में गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
0: अरे बाप रे।
1: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहें शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है।
0: हाँ।
1: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
0: जी।
1: और ये बात बता दी।
0: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
1: मैं ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
0: ये दूसरा आदमी की बात हो रही है?
1: जी
0: जी,
1: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
0: हाँ।
1: लेकिन मुझे आप चाहिए।
0: गजब।
1: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके
0: हाँ।
1: सामने?
0: हाँ।
1: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो आ जाओ घर पे आ जाओ, सुबह हाँ। नाश्ता करेंगे
0: वापस वैसे
1: और फिर करें। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे, करूँगा तेरी। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहाँ पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहाँ पहुँचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूँगा मैं।
0: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
1: हाँ होगी। और मतलब यह है कि डेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा डेटे, जनवरी में करूँ, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू ये सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ रेखा के साथ बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर साहब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या, कब दो और दो चार चीजें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं?
1: नहीं, बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, आउट ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे हैं, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया स्पेशल, डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूँगा। बैठे हुए हैं, सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है। सेट पे आओ, शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी।
0: वाह वाह।
1: चाहे ट्यूसडे है चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड। ट्यूसडे नहीं करूंगा, सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: क्या
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहां आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहां पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की, वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार, मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो तो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है, और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश बैल, सब ये सब, और बातचीत बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए आप 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मैं चाहे तो मैं तेरे फिल्म निकलता हूँ, ऐसा नहीं ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर वोट सीन वीन सब मैं ही रीडिंग करवाता था, सब करवाता था, और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरी पिक्चर, वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो 7 वाले बंगले में था वो, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, ओए क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा? वहाँ पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बाहर बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंडू करके आया, ठंडी में कांप रहा हूँ, साले ये मर जाएगा, कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कौन एक्टिंग? नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन में डाला हुआ है।
0: अच्छा,
1: यश जी को मैंने सुनाया था कोनेक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी।

0: फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया शत्रु ने, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ। मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ, तो वो बुला लेता था बियर पीनी है तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
1: अच्छा।

नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को है आरंभ होती आज की हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए मददगार हैं। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज आबूधाबी स्थित बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। आबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी अब से कुछ ही पलों में।

0: भी नहीं आए अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
2: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

हिवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त मनोज का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के अंक में। दोस्तों, हमेशा की तरह हम करेंगे ढेरों बातें और देंगे आपको ढेरों जानकारियां, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहें अगले कुछ पल मेरे साथ। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं एक सुविचार से। जीवन में दो ही तरह के व्यक्ति असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं पर कुछ करते नहीं और दूसरे वे जो करते तो हैं पर सोचते नहीं। स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, बिना सोचे विचारे अगर आप किसी कार्य को करेंगे तो निश्चय ही असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा कार्य करने से पहले उसे कैसे करना है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस विचार के बाद बारी है एक सुंदर से गाने की।

0: इस गीत के बाद दोस्तों आइए सुनते एक वार्ता, विषय है लक्ष्य। इस विषय पर जानकारी दे रही है हमारी एक युवा साथी आंचल जायसवाल।
1: नमस्कार युवा साथियों, मैं हूं आंचल जायसवाल। जैसा कि हम सब ने बहुत जगह सुना होगा कि लक्ष्य या फिर गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है। बिना लक्ष्य निर्धारण के एक मानव जीवन व्यर्थ है। बिना लक्ष्य के एक इंसान अपने जीवन में कुछ भी हासिल या पा नहीं सकता। तो क्या आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आपने अपना लक्ष्य चुना? शायद हाँ और शायद ना भी, क्योंकि हम सब समय के साथ अपने आज में इस तरह से खोते जा रहे हैं कि आने वाले कल के बारे में सोचने के लिए किसी को फुर्सत ही नहीं है। घर से ऑफिस, कंपटीशन की तैयारी, पढ़ाई पूरी करने का प्रेशर, नौकरी ढूंढने की चिंता और भी बहुत कुछ। और क्या ऐसे में उनका यह भाग्य समझा जाए? और कुछ तो ऐसे भी हैं जो ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जो उनके वर्थ की भी नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को उनका भाग्य समझा जाए? और अगर ऐसा है तो ये भी कहा जाता है कि इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। तो फिर लक्ष्य निर्धारण की महत्ता क्या है? महत्ता ये कि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारण किया है तो आपका वर्तमान, आपका भविष्य और उसका प्रत्येक क्षण उस लक्ष्य को समर्पित होना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य निर्धारण करके हम अगर उसके अनुरूप कार्य ना करें तो वह लक्ष्य निर्धारण व्यर्थ कहलाएगा। और यदि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरी तन्मयता के साथ और उस लक्ष्य के लिए अपेक्षित सर्वस्व समर्पित करने की भावना के साथ लगे रहें तो निश्चित रूप से कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं हो सकता। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक को ये देखना और सोचना होगा कि उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास क्या उस लक्ष्य प्राप्ति के अनुरूप है। यदि हाँ तो सफलता निश्चित है, और यदि नहीं तो प्रयास की कमी लक्ष्य प्राप्ति के लिए बाधक जरूर होगी। और ये तो सर्वस्व विदित है कि असंभव कुछ भी नहीं। एक कविता के माध्यम से अगर कहूं तो लक्ष्य भी है, मंजर भी है, छुपता मंजिलों का खंजर भी है, प्यास भी है, आस भी है, ख्वाबों का उलझा एहसास भी है, पर तू डर मत, तेरी मंजिल को तेरा इंतजार भी है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो पाया ना जा सके या हासिल ना किया जा सके। तो अवसर आपके दरवाजे तक दस्तक देता है, और आज का युवा तो भाग्यशाली इतना कि वह संचार की सुविधाओं से लैस है। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात उसकी प्राप्ति हेतु क्रांतिकारी संचारी संसाधनों ने काफी हद तक सहयोग किया है। आज छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी कोई भी कंपनी या किसी भी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन संचार व्यवस्थाओं की असीमित शक्तियों और स्रोत ही है जो आज हाथ में मोबाइल सेट होने पर यह कहा जाता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो क्या है दुनिया मुट्ठी में? विशेष ये नहीं कि हम सब उपलब्ध सेवाओं या संसाधनों के बूते अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। विशेष ये है कि हम अपने खुद की योग्यता को समर्पण की भावना से उस उच्च स्तर तक ले जाएं कि कोई भी लक्ष्य हमारे लिए सहज ही सहज हो जाए। आज के इस समय में जहाँ हम सब अपनी अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक व समर्पित हैं, क्या उतने ही अपने लक्ष्य के प्रति हैं? शायद नहीं, क्योंकि आज भी 10 या 15 साल बाद हम खुद को कहाँ देखते हैं ये सोचने के लिए आज की युवा को वक्त ही नहीं है। आज के समय में जहाँ हर जगह असीमित उपलब्धियों की तैयारी खड़ी है, कितनों को तो ये पता भी नहीं कि उन्हें आगे करना क्या है। बेसिकली 10th या 12th के बाद कई बच्चे वो करने लगते हैं जो उनके परिवार या प्रियजन कहते हैं, पर खुद से ये क्यों नहीं पूछते कि उनकी खुद की इच्छा क्या है, उनकी रुचि किस विषय विशेष में है, उन्हें खुद से क्या अपेक्षाएं हैं। आज इसी समय में डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा भी कई ऐसी क्षेत्र हैं जहां विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं BBA कर रही हूं, और आज से 6 साल बाद मैं खुद को कहां देखती हूं इसकी रूपरेखा मैंने अपने मन में बनाई रखी है। अगर मैं एक कविता के माध्यम से कहूं, जो कि ये कविता लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा, तो कविता कुछ इस प्रकार है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझ से लिपटी बेड़ियां, समझ ना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, इन पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा तेरी, जला कर तू भस्म कर उससे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मशाल है, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए हताश है, तू चल तेरी वजूद को समय की भी प्रयास है। लक्ष्य प्राप्ति का एक जीता जागता सबूत आज इस समाज में आज भी जो जीवित हैं वो हैं श्री रतन टाटा जी। जहाँ हर कोई एक सफल इंसान या फिर बहुत धनवान होना चाहता है, वहीं उन्होंने अपने देश को विश्व स्तर में पहचान दिलाना ही अपना लक्ष्य समझा। उनकी तारीफ में कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएं, पर उनकी लक्ष्य की श्रेष्ठता बताना बहुत ही कठिन होगा। ये भी होता है एक तरह का लक्ष्य जो हर कोई देख नहीं सकता और हर देखने वाला पूरा नहीं कर सकता। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम सपने देखना छोड़ दें या एक लक्ष्य बनाना ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई दुनिया को जीतता है और कोई दुनिया के दिल को जीत जाता है। पर जरूरी ये है कि आप लक्ष्य चुनिए तो सही, कुछ दूर और कुछ आगे बढ़िए तो सही। और अब तो इतने संसाधन हैं कि संभावना और मौका दोनों की ही कमी दूर होती जा रही है। जहां लॉकडाउन के समय पूरी दुनिया थमसी गई, वहां लोगों ने सोशल मीडिया को सामाजिकता बढ़ाने के अलावा व्यवसाय करने का प्लेटफॉर्म बना दिया और घर बैठकर ही अपनी प्रतिभा और कौशल का उत्तीर्ण प्रदर्शन किया और इस बात को वापस से साबित कर दिया कि जहां चाह होती है वहां राह बन ही जाती है। और सिर्फ नौकरी या पढ़ाई नहीं, संगीत या फिर ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां संसाधनों ने हमारी कार्यशैली को उम्दा ना बनाया हो। और ऐसा कई और संसाधन हैं जो बेहद ही लाभदायक हैं। और इतना सब होने के बाद भी अगर हम अभी भी अपने हाथों पर हाथ रखे बैठे रहें तो ये बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर कुछ समय के बाद समय जरूर रोक देता है। तो इंतजार किस बात का है? आपका लक्ष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये करके देखिए, ये हो सकता है।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: तो दोस्तों, इस गीत के बाद हम कार्यक्रम में वापस लौटते हैं और हम बातें करेंगे किस तरह से युवा आजकल अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अवसाद तनाव की समस्या आम बात हो गई है। ये समस्या अब युवा वर्ग में भी देखने को मिल रही है। आज के इस कॉम्पिटेटिव माहौल में युवा कई बार ऐसी स्थिति में खुद को पाते हैं जब उनमें नेगेटिविटी घर कर जाती है और वह निराशा का दामन थाम लेते हैं। दोस्तों, यही निराशा का भाव कभी कभी खतरनाक रूप भी ले लेता है और साथ में अनेक भावनाओं को जन्म देता है, जैसे कि कुंठा, आक्रोश, क्रोध या कभी कभी तो व्यक्ति इस कदर हीन भावना का शिकार हो जाता है जिससे वह स्वयं को बहुत छोटा समझने लगता है या कई बार सुपीरियर कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो जाता है। दोनों ही स्थिति में उसका जीवन निराशा और तनाव से घिर जाता है और उसके सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता समाप्त होने लगती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में उसे सही गाइडेंस और काउंसलिंग एवं चिकित्सा की जरूरत होती है और उसका उपचार समय रहते ना किया जाए तो वह ऐसे में अत्यंत हिंसक या आत्महत्या जैसे गंभीर कदम भी उठा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में जो इस प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं उन्हें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि वे इस समस्या से स्वयं को बाहर निकाल सके। अतः डिप्रेशन के शिकार लोगों को ऐसे कार्यों में अपने आप को खुद व्यस्त कर लेना चाहिए जो उनकी हॉबी रही हो। मसलन नॉवल रीडिंग कर सकते हैं, पेंटिंग करें, गार्डनिंग करें, व्यायाम करें, योग करें आदि इस तरह के कई कार्य हैं जिसमें वो अपने को व्यस्त रख सकते हैं। ये सभी तरीके उसको अवसाद की स्थिति से बाहर निकालने में मददगार साबित होंगी। साथ ही साथ दोस्तों, अवसाद से ग्रसित व्यक्ति को कभी भी ज्यादा समय अकेला नहीं रहना चाहिए। उसे बीच बीच में दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच समय बिताना चाहिए, देश दुनिया के खबरों से खुद को जोड़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संवाद के अवसर ढूंढने चाहिए। यानी जब भी कभी ऐसा महसूस हो कि आप अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं तो स्वयं को भिन्न भिन्न तरीके से व्यस्त रखें एवं खुद को सकारात्मक माहौल में रखें। पॉजिटिव एनर्जी बहुत कारगर है डिप्रेशन से आपको निजात दिलाने में। दोस्तों, जीवन में आपकी खुद की जिंदगी से बहुमूल्य चीज कुछ नहीं हो सकती है। बुरे से बुरा दौर भी बीत जाता है, इसलिए जीवन में हर तरह की परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रखें। धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ किसी भी हालात से आप मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा के बाद लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत अब से कुछ ही पलों में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: पंचो जय हिंद। हाँ भैया, देखा नारा लगल हमन के बैठकी शुरू हुए।
5: हाँ भैया, भैया देखो आजकल जौन बा तरह तरह के बीमारी जौन बा हो जाता सबके, अब बहुत ऐसा बीमारी बा जो पता भी नहीं चल पावला बीमारी भइल बा, जो लोग जांच नहीं हो जाला तो जकरे बनाए मालूम है बीमारी बा, ते अपन निश्चिंत होकर रहला घूमला, बाकी अचानक जब कोनो बात हो जाले, कोनो घटना हो जाले, तब पता चलला कि है बीमारी रहा है।
4: सही कहल भैया, यही में कई बीमारी बा उच्च रक्तचाप, जौन कि बीपी के भी बीमारी हमन के कहल जाला, हाइपर टेंशन भी 17 मई के मनावल जाला भैया, आज एक दिन विश्व हाइपर टेंशन दिवस है। कर ए दिन हमन के जागरूकता फैलावल जाला, बतावल जाला बीमारी के बारे में कि कैसे ऐसे सावधानी बरते के चाहिए ताकि ऐसे कोनो तरह के दुर्घटना ना हो।
5: हाँ भैया, एक शुरुआत 2006 में भइल रहल, तब से जौन बा हर साल जौन बा आज एक दिन ही मनावल जाला भैया। भैया देखो, आज पूरा विश्व में करीब 130 करोड़ लोग जौन बा हाई बीपी से पीड़ित बा, जौन में भैया एवं 46% ऐसा लोग बा जे पते नहीं बा उनके हाई बीपी बा। तो भैया ये लोगन खातिर हमेशा जौन बा एक डर बनल रहला। अब भारत में भैया हर 4 आदमी में 1 आदमी जौन बा एकर शिकार भइल बा, तो ऐसने में भैया ये जरूर ध्यान देव चाहिए, हर व्यक्ति के अपन ध्यान देव चाहिए कि वो जौन बा जरूर अपने
4: समय समय पर जांच करावे चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेवे के चाहिए, और अगर दवा चलाता तो भैया ओके छोड़े के नहीं चाहिए, नियमित खाए के चाहिए, तब वे बीमारी से निजात मिल सकेला भैया। हाँ, निजात ना है मतलब भी कहल जा सकेला
5: कि हाँ परमानेंट जौन बा दवाई खाए के पड़ी।
4: एक भैया साइलेंट किलर भी कहल जाला, ऐसे आज के दिन जागरूकता फैलावे खातिर हमन के जानकारी दिहल जाता अगर केहू के बात आसपास के लोग के, तो आप लोग के जागरूकता फैलावे के चाहिए और इसे बचाव के बारे में बतावे के चाहिए।
5: भैया साइलेंट किलर है, ये कहल जाला कि एकर कोनो लक्षण ना होला, पता ना चल पावला, सिर दर्द, चक्कर आयल, चाहे जौन बा नाक से जब खून आ जाला तब भाई पता चल पावला, उस समय बीपी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाला तब ये सब लक्षण लौकला भैया, ऐसने में जानलेवा भी साबित हो जाला।
4: चलो भैया हमन के बात कही तो चलते रहे, अब आवल जाओ एक ठो जानकारी सुनल जाओ, वार्ता नई शिक्षा नीति पर, ए पर जानकारी देवे खातिर डॉक्टर हरिप्रकाश शर्मा स्टूडियो में आयल हमन, कही जाओ उनका स्वागत और सुनल जाओ जानकारी। भैया
6: इस संसार का शाश्वत नियम है, परिवर्तन से ही सृष्टि में नवीनता आती है, प्रतिक्षण सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है, पेड़ों पर मृद कोपलें निकलती हैं, जो हरे पत्तों का रूप धारण करती हैं। हरे पत्ते पीले पत्ते में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर पीले पत्ते भी सूखकर झड़ जाते हैं और इनके स्थान पर फिर नए पत्ते आ जाते हैं। पेड़ों की टहनियों पर पहले नन्ही कलिकाएँ प्रादुर्भूत होती हैं, वे सुंदर सुगंधित पुष्प का रूप धारण करती हैं। पुष्प पहले मुरझाता है और फिर सूखकर हवा के झोंकों में बिखर जाता है। प्रकृति की यही नित्य नई नवीनता हमें सदा आकर्षित करती रहती है। प्रकृति की इस चिर नवीनता की पृष्ठभूमि में परिवर्तन की प्रमुख भूमिका रहती है। ये परिवर्तन प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, समाज में प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। पुरानी मान्यताओं का स्थान नवीन मान्यताएँ ले रही हैं। पुरातन विचार जा रहे हैं और नूतन विचार आ रहे हैं। पुरातन मूल्यों के साथ साथ नूतन मूल्य भी ग्रहण किए जा रहे हैं। जल स्थिर रहेगा तो सड़ जाएगा, इसीलिए जल का प्रवाह जारी रहना चाहिए। इसी प्रकार जो समाज स्थिर यथावत स्थिति में बना रहना चाहता है और नए विचारों को ग्रहण नहीं करता है, वह जीवित नहीं रह सकता है। नए नए विचारों को ग्रहण करने से ही समाज को नया जीवन प्राप्त होता है। अपेक्षित परिवर्तनों से ही शिक्षा में नवीन चेतना आती है। ये परिवर्तन शिक्षा में नवीनता लाते हैं और शिक्षा आगे की ओर बढ़ती है। नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई उत्कृष्ट पहल है। वर्ष 2030 तक नई नीति को पूर्ण रूप से करने की आशा है। उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है और प्राथमिक शिक्षा इस नींव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों की समग्र विकास की नींव रखती है। यह वह चरण है जब बच्चे बुनियादी पढ़ने लिखने और गणना करने के कौशल विकसित करते हैं। इसके साथ ही बच्चों की सोचने समझने की क्षमता सामाजिक कौशल और नैतिक मूल्यों की भी नींव रखी जाती है। नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को तैयार कर पूर्ण रूप से 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इस शिक्षा नीति ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में व्यापक सुधार का प्रस्ताव किया है, जिससे बच्चों की शिक्षा को अधिक समावेशी समग्र और प्रभावकारी बनाया जा सके। यह नीति न केवल प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाएगी बल्कि हमारे समाज के भविष्य को भी उज्जवल बनाएगी। नई शिक्षा नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा का हर पहलू व्यापक हो और बच्चों को आधुनिक युग के लिए तैयार कर सकें, नहीं तो समाज के वर्तमान स्वरूप के अनुरूप अपने को स्थापित करने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षा का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि बच्चों की सोचने समझने की क्षमता को विकसित करती है। यह वह चरण है जब बच्चे बुनियादी कौशल जैसे पढ़ना लिखना और गणना करना सीखते हैं। इसके साथ ही उनकी सामाजिक समझ भी विकसित होती है। जिस प्रकार घर को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाने के लिए घर की नींव को सदैव सुदृढ़ बनाया जाता है, जिससे घर हमेशा मजबूत बनता है, उसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा भी आगे की शिक्षा के लिए एक मजबूत नींव का काम करती है, जिसके सहारे हमारे भविष्य को घर रूपी भविष्य को संवारने के लिए तैयार किया जाता है, जिससे अपना भविष्य आत्मविश्वासी एवं सफल बन सकता है। नई शिक्षा नीति की प्रमुख बातें प्रमुख हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी की और न्यूमरेसी। नई शिक्षा नीति में पहले से तीसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर विशेष जोर दिया गया है। इसके सुदृढ़ता के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य 2025 तक सभी बच्चों को सभी बुनियादी कौशलों में दक्ष बनाना है। इसका मतलब यह है कि तीसरी कक्षा तक के सभी बच्चों के लिए या सभी बच्चों को पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित में महारत हासिल हो सके। दूसरा है 5+3+3+4 की संरचना। पारंपरिक 10+2 की संरचना को बदलकर 5+3+3+4 की संरचना लागू की गई है। यह नई प्रणाली बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। फाउंडेशनल स्टेज 3-8 वर्ष के अंतर्गत 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली से दूसरी कक्षा शामिल है। प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष, इसमें तीसरी से पांचवी कक्षा शामिल है। मिडिल स्टेज 11 से 14 वर्ष, इसके अंतर्गत इसमें छठी से आठवीं कक्षा शामिल है। सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 वर्ष, इसके अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक की कक्षा शामिल है। मातृभाषा में शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को मातृभाषा या

0: साथ साथ नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी शामिल किया गया है। खेल, कला, संगीत, नाटक आदि को पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। इससे बच्चों में न केवल शैक्षिक बल्कि जीवन कौशल भी विकसित होगी। शिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कार्य में दक्ष एवं निपुण बनाया जाता है। इसीलिए काम की सफलता के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है। शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके पेशेवर विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों, तकनीकी उपकरणों और समग्र शिक्षा के महत्व पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षा दे सकें और उन्हें प्रेरित कर आगे के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। टेक्नोलॉजी का समावेश, नई शिक्षा 2020 के अंतर्गत शिक्षा में तकनीकी साधनों का समावेश बढ़ाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल उपकरणों और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग बच्चों की शिक्षा में किया जाएगा जिससे वे आधुनिक तकनीकियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। डिजिटल लर्निंग से न केवल शिक्षा आसान एवं सुलभ होगी बल्कि बच्चों को नई तकनीकी के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिलेगी। समावेशी शिक्षा, सभी छात्रों को उनकी योग्यता या अक्षमता की परवाह किए बिना समावेशी शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्राप्त होती है। यह विविधता, स्वीकृति और इस विश्वास को बढ़ावा देता है कि प्रत्येक छात्र शैक्षिक वातावरण में पूरी तरह भाग ले सकता है। समावेशी शिक्षा को समावेशन भी कहा जाता है। यह शिक्षा जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, जिसमें गैर विकलांग, जिनमें विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले लोग भी शामिल हैं, मुख्य धारा के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है ताकि वे भी मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल हो सकें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी बच्चे को उसकी सामाजिक, आर्थिक या शारीरिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न होना पड़ सके। मूल्याधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा शैक्षणिक विषयगत ज्ञान को भावनात्मक ज्ञान और शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला के साथ एकीकृत करती है। इसीलिए विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर इसका विस्तार किया जा रहा है। मूल्य शिक्षा विद्यार्थियों में जीवन मूल्यों को स्थापित करने के लिए सकारात्मक पहल है। इसीलिए नई शिक्षा नीति में मूल्य आधारित शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। बच्चों को नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान दिया जाएगा जिससे वे एक अच्छे नागरिक बन सकें। उन्हें सच्चाई, ईमानदारी, सहिष्णुता और भाईचारे जैसे मूल्यों का महत्व समझाया जाएगा। पाठ्यक्रम में सुधार, नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम को भी अधिक व्यवहारिक और बच्चों की रुचि के अनुरूप बनाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों को न केवल पुस्तकीय ज्ञान मिले बल्कि उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का भी ज्ञान हो। इसके लिए प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। सहभागिता और सामुदायिक सहभागिता, शिक्षा नीति में सामुदायिक सहभागिता और माता पिता की भागीदारी को भी महत्व दिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे केवल स्कूल में ही नहीं बल्कि घर पर और समुदाय में भी सीखें। माता पिता को भी बच्चों की शिक्षा में शामिल किया जाएगा जिससे वे अपने बच्चों के शैक्षिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को न केवल अधिक समावेशी और प्रभावी बनाना है बल्कि बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाने के लिए तैयार भी करना है। यह नीति न केवल प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाएगी बल्कि हमारे समाज के भविष्य को भी उज्जवल बनाएगी। निष्कर्ष के रूप में, नई शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारत में शिक्षा के विकास के लिए रोड मैप की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह ज्ञान आधारित समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। आइए हम सब मिलकर इस नई शिक्षा नीति का स्वागत करें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे और अपने सपनों को साकार कर भारतवर्ष के नाम को विश्व में सर्वोपरि बनाए।
1: हाँ भैया, देखो नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देते रहना है डॉक्टर हरिप्रकाश शर्मा। भैया ये बतौले हैं कि कैसे जौन बा नई शिक्षा नीति जौन बा छात्रों खातिर लाभकारी बा और कौन तरह से शिक्षा का अधिक से अधिक लाभ लिहल जा सकल। भैया तो भैया इनके दिल जा धन्यवाद।

0: हाँ भैया देखा मन मनसाइन भइल, गीत सुनल गइल।
1: बलराम यादव और साथियों के आवाज में दिहल जाओ इनके
0: हाँ
1: धन्यवाद।
0: भैया भैया देखो जौन बा घड़ी के सुई बा इशारा करतिया कि अपने बैठकी के समय पूरा भइल, तो
1: चलो
0: चलल
1: जाओ
0: जा
1: पंचो
0: पंचो। जय
1: जय हिंद।
0: हिंद।

ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः भोजपुरी तथा हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम सोनी निगम। बेसिक शिक्षा विभाग के अंशकालिक अनुदेशकन का बढ़ल मानदेय वितरण के लेके आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कल गये। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुदेशकन के सम्मान और बढ़ल मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कैले। इस मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि सरकार अंशकालिक अनुदेशकन का मानदेय 9,000 रुपया से बढ़ा के 17,000 रुपया हर महीना कई दिले हवे। वहां के बेसिक शिक्षा के सगरो शिक्षा व्यवस्था का नई बतावत कहले कि सरकार बेसिक शिक्षा से जुड़ल कार्मिकन के हरदम में सम्मान के नजर से देखले हो।
1: हम न्यू को उपेक्षा करते क्योंकि दिखाई नहीं देता, लेकिन न्यू ही अगर मजबूत नहीं होगी तो उसमें सशक्त एक समर्थ और सशक्त भवन कैसे बन पाएगा, मजबूत इमारत नहीं बन पाएगी। और इसीलिए अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, बेसिक शिक्षा परिषद के जुड़े हुए शिक्षकों के मानदेय से जुड़े हुए मामले हो या उनसे जुड़े हुए अन्य बातें हों, हम लोगों का मानना रहा है सम्मानजनक होना चाहिए।
0: अनुदेशकन के सम्मान खातिर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे भी संबोधित कैले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हमें कि राष्ट्रवाद और भारतीयता के भावना से ही भाजपा कार्यकर्ता लोगिन के समाज में सम्मान मिलेला। श्री योगी आज गोरखपुर में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र के संबोधित करत रहले। कार्यक्रम में वहां के कहने की पार्टी संस्थापक लोग राष्ट्रहित में जौने सोचले रहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में उस सज्जो साकार भइल हवे। एकरे पहले गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कई के मुख्यमंत्री लोगिन से भेंट कैले। इस मौका पर वहां के करीब 150 लोगिन के समस्या सुन ली और उनके निपटारा का निर्देश जुड़ल अधिकारियों के दिले। मुख्यमंत्री लोगिन के भरोसा देत कहले कि जन समस्या का समाधान सरकार का प्रतिबद्धता हो। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहले हमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुई है। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहला फेरा का उद्घाटन करत वहां के कहने कि भारत दुनिया के हर उभरत क्षेत्र में अगुआ बन गए हवे।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए टेक पार्क इसको आगे बढ़ाएंगे।
0: सरकार चांदी के आयात पर रोक लगा देले हवे। विदेश व्यापार महानिदेशालय एगो अधिसूचना में कहले हवे कि सोना और प्लेटिनम से मढ़ल चांदी समेत चांदी के आयात का नीति के संशोधित कई के मुक्त से प्रतिबंधित कई दिहल गइल बा। पश्चिम एशिया में चलत संघर्ष के बीच ईंधन संरक्षण के लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन के बाद श्रम विभागो तैयारी में जुट गइल बा। प्रदेश के बढ़न उद्योगन और व्यावसायिक संस्थानन के हफ्ता में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम यानी घरवे से ऑनलाइन जरिया से काम कैले का व्यवस्था लागू कैले का सलाह दिहल जा रहल बा। श्रम आ सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर विभागीय अधिकारियन के एकरे खातिर एडवाइजरी जारी करे का निर्देश दिले हमें। लेखपाल भर्ती के 21 मई के होखे वाली मुख्य परीक्षा खातिर प्रवेश पत्र उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिहल गइल बा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक बतौले कि अभ्यर्थी तय शुल्क जमा कई के ओगे डाउनलोड कर सकेले। 7,994 पदन खातिर होखे वाली परीक्षा प्रदेश के 44 जिलन में आयोजित कैल जाये। आज से अधिक ज्येष्ठ मास यानी पुरुषोत्तम मास शुरू हो गइल बा। अधिक मास में मथुरा समेत समूचा ब्रज मंडल में एक महीना ले चले वाला पुरुषोत्तम मास मेलों का आयोज से शुभारंभ हो गइल बा। ब्रज मंडल के एह मेला में आस्था और विश्वास के साथ श्रद्धालु उमड़े लागल हवें। एह बीच श्रद्धालुअन के सुरक्षा के देखत प्रशासन गोवर्धन और वृंदावन के लेके पूरा ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा का कड़े इंतजाम कैले हवे। भीड़ नियंत्रण खातिर भारी संख्या में पुलिस बल के तैनाती के साथे साथे सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी कैल जा रहल बा। गोरखपुर किले के पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलन में आज तेज घाम के चलते दिन बहुते गर्म रहल। मौसम विभाग अगला कुछ दिनन ले तापमान में बढ़ोतरी भइले का और लू चलेले का अनेसा जतवले हवे। विभाग इहो पूर्वानुमान लगवले बाकी मानसून 18 जून के गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक दे। एह साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम बरखा का आगम बा। एकरे साथ ही ई समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। बेसिक शिक्षा विभाग के अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा को समूची शिक्षा व्यवस्था का नींव बताते हुए कहा कि सरकार ने बेसिक शिक्षा से जुड़े कार्मिकों को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा है।
1: हम न्यू को उपेक्षा करते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता, लेकिन न्यू ही अगर मजबूत नहीं होगी तो उसमें सशक्त एक समर्थ और सशक्त भवन कैसे बन पाएगा, मजबूत इमारत नहीं बन पाएगी। और इसी

0: उपदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, बेसिक शिक्षा परिषद के जुड़े हुए शिक्षकों के मानदेय से जुड़े हुए मामले हों या उनसे जुड़े हुए अन्य बातें हों, हम लोगों का मानना रहा है सम्मानजनक होना चाहिए।
1: अनुदेशकों के सम्मान के लिए लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्रवाद और भारतीयता के भाव से ही भाजपा कार्यकर्ताओं को समाज में सम्मान मिलता है। श्री योगी आज गोरखपुर में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी संस्थापकों ने राष्ट्रहित में जो भी सोचा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो सब कुछ साकार हुआ है। इसके पहले गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्रतिबद्धता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए टेक पार्क इसको आगे बढ़ाएंगे।
1: सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईंधन संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद श्रम विभाग भी तैयारी में जुट गया है। प्रदेश के बड़े उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही ऑनलाइन माध्यम से काम करने की व्यवस्था लागू करने की सलाह दी जा रही है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं। लेखपाल भर्ती की 21 मई को होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। 7,994 पदों के लिए होने वाली परीक्षा प्रदेश के 44 जिलों में आयोजित की जाएगी। आज से अधिक ज्येष्ठ मास यानी पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया है। अधिक मास में मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाले पुरुषोत्तम मास मेला का भी आज से शुभारंभ हो गया है। ब्रजमंडल के इस मेले में आस्था और विश्वास के साथ श्रद्धालु उमड़ने लगे हैं। इस बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में आज तेज धूप के चलते दिन काफी गर्म रहा। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों तक तापमान में वृद्धि होने और लू चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने यह पूर्वानुमान भी लगाया है कि मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पंचो जय जवान जय किसान।
3: भैया देखा फिर अमर के नारा लगल बैठकी शुरू भई।
4: हाँ भैया देखा किसान भाई लोग जो हमेशा खेती बाड़ी में लगल रहे कुछ ना कुछ करत रहा भैया। बाकी भैया ओमन खेती करण तो मन कई तरह के दिक्कत भी आए, जैसे कि खर पतवार अगर हो गए तो भैया वो बड़ा नुकसान करला फसल खातिर। एक तरह से फसल का दुश्मन है भैया खरपतवार, इसलिए खरपतवार पर नियंत्रण करके भैया जो उत्पादन है वो किसान भाई लोग बढ़ा सकल हैं। कहें कि भैया जितना ओमन
3: सही कहला भैया, खरपतवार के सीधा असर जनबा उत्पादन पर पड़ेला, ऐसे पर ध्यान देवे के चाहिए। खरपतवार मुख्य फसल के पोषक तत्व तो जल और सूर्य के प्रभाव के छीन लेला भैया। प्रभाव नियंत्रण के बिना ए पर जनबा नियंत्रण नहीं पावल जा सकेला और उत्पादन सीधे सीधे प्रभावित होला।
4: भैया अगर जौन खाद और पानी जौन पड़ा ला ओकर सबसे अधिक फायदा भैया जौन बा खरपतवार के हो जाला और फसल भैया वो हिसाब से बढ़ नहीं
3: पा जाला और नुकसान ओकर हो जाला भैया।
4: और ओकर भैया 40% तक भैया जौन बा उत्पादन घट जाला,
3: प्रभावित हो जाला। सही कहला भैया। और ऐसे जौन बा जितना पंच भाई पैसा लगावल जितना आर्थिक रूप से उनका क्षति तो होबे करला, उत्पादन बेहतर नहीं मिलला तो उन्हों के निराशा हाथ लगेला। ऐसे अगर शुरू में पर नियंत्रण कर लिए खरपतवार पर तो उत्पादन पर सीधा सीधा असर नहीं पड़ी भैया।
4: हाँ भैया, खरपतवार पर 30 से 45 दिन के भीतर भैया जौन बा नियंत्रण कर लेक चाहिए।
3: चल सही कहला भैया। चला हमन के बतकही होते रही, अब एक तो बातचीत सुन लिया। जल भराव वाले क्षेत्रों में धान की कृषि ये भी सब जानकारी देवे खातिर डॉक्टर एस के तोमर स्टूडियो में आए हुए, इनसे बात करते हूँ भैया विनय कुमार।
5: किसान भाई लोग, अपने पूर्वांचल में बहुत ऐसा खेत बा जौना में बरसात में ज्यादा पानी लग जाला आ खेत परती रह जाला, ओमे धान का फसल ना उगा पावेला लोग। लेकिन कृषि वैज्ञानिक लोग की मदद से ऐसा बहुत धान का प्रजात बाड़ी कि अगर आपका खेत गहरा बाटे जौने में जल भराव का दिक्कत होले ओकरे खातिर अलग अलग धान का प्रजाति बा, आ ओकर बुआई गर्मी में कइल जाला। यही से संबंधित जानकारी देवे खातिर फोन लाइन से जुड़ल हूँ कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार जनपद गोरखपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रभारी अधिकारी डॉक्टर एस के तोमर जी। सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर साहब, कौन कौन ऐसा प्रजाति हैं जौन की गहरा पानी में लगावल जा सकेला?
6: धान की खरीफ प्रमुख फसल होती है और धान की जो क्षेत्र जहाँ पर जल भराव होता है वहाँ पर जो है जो प्रजातियाँ ली जाती हैं वो ऐसी प्रजातियाँ ली जाती हैं जहाँ पानी लगने से नुकसान ना हो। इसमें प्रमुख रूप से जो प्रजातियाँ हैं उसमें सांभा सबवन, स्वर्णा सबवन, ये दो प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनमें ऐसा जीन डाला गया है जिससे ये 10-12 दिन पानी में डूबने के बाद भी इनमें पैदावार मिल जाती है। तो किसान भाइयों को एक तो इन प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी, जो किसान भाई के यहाँ पानी तो लगता है लेकिन पानी आकर के और निकल जाता है और ज्यादा दिन तक पानी नहीं रहता है, तो वहां पर चिरान सबवन एक वैरायटी है, उसको भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। ये कम दिन की प्रजाति है और जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर जल भराव की ज्यादा देर तक समस्या नहीं होती, इन इस प्रजाति को किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जल भराव की भी 2-3 कंडीशन होती हैं। एक होता है कि कम जल भराव पानी तो लगता है लेकिन उसकी जो पानी की मात्रा होती है वो 30 सेंटीमीटर से कम होती है, 30 सेंटीमीटर ज्यादा होते हैं। तो जहां पर पानी का जलभराव कम होता है वहां पर सामान्य जो प्रजाति हमारी है, BPT 5204 है या MT 7029 जिसको हम सोना कहते हैं, उन प्रजातियों को भी किसान भाई बुआई कर सकते हैं। लेकिन जलभराव वाले जो क्षेत्र हैं, बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र हैं, जहां पर पानी काफी देर तक रहता है, ज्यादा मात्रा में पानी रहता है और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि डूब जाता है, वहां पर स्वर्णा सवन और सामा सवन को किसान भाई को प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जल लहरी है, इस प्रजाति को भी आप जहां तक 30 से 50 सेंटीमीटर तक पानी आपके खेत में लगता है, इस प्रजाति को प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो पानी की साथ साथ बढ़ती हैं। वाटर लेवल, अगर जल का आपके खेत में लेवल धीरे धीरे बढ़ता है तो उसी के हिसाब से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अपनी लंबाई को बढ़ाती रहती हैं, जिसमें खास करके जलप्रिया और जलनिधि, ये दो प्रजातियां ऐसी हैं जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इनकी हाइट बढ़ती जाती है और ये बहुत ही लंबी अवधि की प्रजातियां होती हैं, बहुत देर से विलंब से ये कटती हैं।
5: डॉक्टर साहब, जौन प्रजाति बतौली हैं कुल, ओकरे बुआई का तरीका का वैज्ञानिक तरीका का है, जवना के वजह से बुआई कईल जा तो जहाँ कोनो फसल ना होत बा वहीजा से भी यह साल धान के फसल काटल जा सकेला।
6: जल भराव वाले क्षेत्रों में जहाँ पानी लगता है वहां पर ये संस्तुति है कि किसान भाई जब पानी आता है अपने यहाँ, जो बरसात का शुरू होता है, ये मान के चलते हैं कि 20 जून के बाद मानसून ऑनसेट होता है, मानसून आने का जो समय होता है, तो उसके पहले आपका जो धान है वो जम करके और इस कंडीशन में आ जाए कि पानी अगर आए भी तो उसको नुकसान ना हो। तो इसलिए हमको मई के लास्ट में, 20 मई के बाद से लेकर के जून के प्रथम पखवाड़े तक, हर हाल में ऐसे क्षेत्रों में बुआई कर लेनी चाहिए जहां पर पानी लगने की संभावना होती है। बुआई करने के लिए आप जो है धान की सीधी बुआई करें, इससे आपका लागत कम होगा कि अगर बाढ़ से नुकसान भी होता है, पानी से नुकसान भी होता है, तो लागत कम रहेगी तो आपको ज्यादा खलेगा नहीं। और इसके लिए जीरो टिल मशीन एक आती है, उसमें खेत तैयार करके आप धान की सीधी बिजाई आप इस मशीन के द्वारा कर सकते
5: धान का जो सीधा बुआई खेत में होई,
6: हैं।
5: ओकर
6: जी
5: बीज का मात्रा और लाइन से लाइन का दूरी और साथ ही साथ खाद कितना देवे के पड़ी प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ के हिसाब से?
6: हाँ, धान की

0: जो बीज की मात्रा है जीरो टिल मशीन से जब आप बुआई करते हैं, तो ये जो प्रजाति हमने बताई है ये ज्यादातर मोटे धान वाली प्रजातियां हैं, और इनकी जो बीज की मात्रा है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको लगेगा जीरो टिल मशीन से जब आप बुआई करेंगे। और बुआई करने के लिए जो लाइन से लाइन की दूरी बताया, जब जीरो टिल मशीन से आप बुआई करेंगे तो उसमें और निश्चित रूप से जो उसके फार होते हैं वो एक निश्चित दूरी पर बंधे होते हैं, ये 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी इससे लाइन की आती है। और तीसरी बात, आपने पूछा खाद की मात्रा कितनी लगेगी, तो जो खाद की मात्रा हम लोग सामान्य धान में देते हैं उसी की तरह से इसमें भी हम धान की बुआई के समय जो मात्रा है वो हमें देनी है, बाद में पानी की टॉप ड्रेसिंग के उसके हिसाब से हमको करना है। तो 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई को इसमें प्रयोग करना चाहिए। इसमें से फास्फोरस और पोटास जो है वो किसान भाई को बुआई के समय, और जो नत्रजन की मात्रा है वो आधी नत्रजन की मात्रा आप बुआई के समय दे दें। बाद में पता चलता है कि पानी लग गया तो नहीं प्रयोग कर पाते हैं, अगर कम पानी रहता है तो आप बाकी बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 से 3 बार में आप दे दें।
1: सबसे बड़ा समस्या होला कि गर्मी में धान का सीधा बुआई करे के बाटे, तो एक तो खेत का नमी और दूसर का खरपतवार नियंत्रण,
0: जी
1: यह दोनों समस्या का समाधान कैसे करें किसान भाई?
0: देखिए, नमी की जहां तक बात है तो ऐसे क्षेत्रों में अगर बरसात नहीं होती है, जैसे इस साल अगर हम देख रहे हैं हर 7वें 8वें दिन बरसात औसत जो है सर्दी से लेकर के अब तक हो जा रही है, इसका लाभ हमारे जो किसान भाई है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र वाले या जल भराव क्षेत्र वाले वो किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं अभी खेत को अच्छे से तैयार करके, और किसान भाई जो है इसको बुआई कर सकते हैं धान की। और दूसरी चीज आपने पूछी खरपतवार नियंत्रण का, देखिए धान की सीधी बुवाई में जो खरपतवार नियंत्रण की बात है उसमें दो चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि बुआई के 48 घंटे के अंदर आप जब धान की सीधी बुवाई जीरो टिल मशीन से करते हैं तो बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडामिथिलीन एक दवाई आती है खर मारने की, उसकी 3.3 लीटर मात्रा को आप घोल करके पानी में 700 लीटर पानी में घोल लें और उसका जमीन के ऊपर छिड़काव कर दें तो ये खरपतवारों के जमाव को काफी हद तक कंट्रोल करता है। दूसरा, अगर आपके खेत में खरपतवारों का जमाव हो गया है, लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं इसको, तो उसमें उस समय आप जो है बिस्पेरीबैक सोडियम 10 SC का ये आता है और इसके साथ में पाइरोजोसल्फ्यूरान इसकी 80 ग्राम मात्रा, बिस्पेरीबैक सोडियम 200 ml, इन दोनों दवाइयों को मिला करके आप स्प्रे करेंगे बुआई के 25 से 30 दिन पर जब खेत में आपके खरपतवार 2 से 4 पत्ती के हो जाएं, उस समय आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपको खरपतवार नियंत्रण काफी हद तक आप इसको कंट्रोल कर लेंगे।
1: डॉक्टर साहब, ये जौन खरपतवार नाशी बतौली हैं, ये दो लाइन के बीच में छिड़के के परी या पूरा धान के
0: नहीं
1: फसल
0: नहीं
1: पर ही?
0: ये पूरे धान की फसल में एक तरफ से छिड़की, सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है ये, धान को कुछ नहीं कहता है और जितने भी खरपतवार होंगे आपको उनको वो कंट्रोल कर लेता है, इसका आप छिड़काव करें। और इसके ये ध्यान रखें कि मात्रा और छिड़काव का समय, दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण होती है खरपतवार नियंत्रण में। जैसे हमने बताया हमारे यहाँ छोटे किसान है, मैं एकड़ में बता देता हूँ मात्रा इन किसान भाइयों को, देखिए 100 ml बिस्पेरीबैक सोडियम जिसको आप विभिन्न नामों से, व्यापारिक नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, बिस्पेरीबैक सोडियम 100 ml प्रति एकड़ और 80 ग्राम पाइरोजो सल्फुरान, इन दोनों दवाइयों को मिला करके आप 150 लीटर पानी में घोल लें और इसका बुआई के 25 से 30 दिन पर आप इसका छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के लिए आप ये ध्यान रखें कि आपका जो नोजल है वो अच्छा होना चाहिए, फ्लैट पैन नोजल का आप इस्तेमाल करें, और जब आप स्प्रे करते हैं तो जमीन से आपके नोजल की जो ऊंचाई है वो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए जिससे आपका जो है सही ड्रिफ जो है वो पत्ती पर गिरती है।
1: फुहार बढ़िया से
0: हाँ
1: खरपतवार पर पड़ जा और धान
0: जी
1: के भी फसल पर।
0: हाँ, धान पे पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है,
1: अच्छा डॉक्टर
0: एक
1: साहब,
0: कैप सब बस।
1: गर्मी के महीना में का एकर गुड़ाई भी कैल जरूरी बा या वैसे खाली खरपतवार नाशी का प्रयोग करके फसल के छोड़ देवे के बा?
0: देखिए, गुड़ाई करना अगर आपके पास सस्ता श्रम उपलब्ध है तो आप खरपतवार नाशी का जो छिड़काव करते हैं उसको बचा सकते हैं, उसके लिए निराई गुड़ाई आप कर दें तो सबसे अच्छी विधि तो वही होती है। लेकिन चूंकि श्रम उपलब्ध नहीं है या मिलता नहीं है समय से, इसलिए खरपतवार नाशियों का सहारा लेना पड़ता है।
1: कीड़ा आ बीमारी का कोनो बरसात अइला के पहले में लगला का संभावना रहेला?
0: देखिए, जो ऐसे क्षेत्र हैं उनमें बरसात के पहले कोई ऐसा रोग या बीमारी देखने को नहीं मिलता है सामान्यतः, लेकिन ये है कि किसान भाई जब भी बुआई करें आप बीज को शोधित करके जो है बुआई करें, और शोधित करने के लिए आप बावस्टीन का इस्तेमाल करें, थीरम का भी इस्तेमाल करें, इनका आप शोधित करके बुआई करेंगे तो धान में ज्यादा समस्याएं नहीं आती। धान में समस्या और तभी आती है जब जल भराव हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो उस समय शीत ब्लाइट का प्रकोप होता है, और बाद में चल के जो आपका झुलसा आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट जिसको कहते हैं, वो आता है, तो ये तो बाद की स्टेज में है, आता है।
1: जल भराव वाले क्षेत्र में धान का कौन कौन प्रजाति लगावे के चाही, ओकर लगावला का कृषि तकनीक का हो सकेला, इससे संबंधित डॉक्टर एस के तोमर जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बेली पार, आप इतना अच्छा जानकारी दिहनी, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया, देखो बातचीत सुन गए, जल भराव वाले क्षेत्रों में धान की कृषि जानकारी देते हैं डॉक्टर एस के तोमर, इनसे बतियोला विनय कुमार, तो इनके दिन धन्यवाद। और भैया लगे हाथ जोन भाई एक गीत सुन लिया जाए।

0: हाँ भैया, पूरा हरमन मनसाइन भइल और लगले हाथ एक ठो वार्ता सुनल जाओ। पशुओं को अंतः परजीवी से कैसे बचाएं, ये भी सब जानकारी देते रहो वरुण कुमार वर्मा।
1: पशुओं के शरीर के अंदर पाए जाने वाले परजीवी को अंतः परजीवी कहते हैं। अंतः परजीवी पशुओं में दूषित चारा, दाना, चारागाह, दूषित पानी आदि से फैलता है। तराई और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले पशुओं में इनका प्रकोप अधिक हुआ करता है। दूषित घास, चारा आदि खाने पर परजीवी का लार्वा पशु के शरीर में प्रौढ़ा अवस्था में अपना विकास करता है। अंतः परजीवी कीट जैसे लिवर फ्लूक, राउंड वर्म, टेप वर्म, स्केरिस आदि

0: शरीर के अंदर लीवर, आमाशय, आंत, यकृत, फेफड़े आदि में रहते हैं तथा अपना कुप्रभाव डालकर पशु का स्वास्थ्य नष्ट करते हैं। अंतः परजीवी से हानियां, अंतः परजीवी कीट से ग्रसित पशु की शक्ति धीरे धीरे छीण हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है और अंत में पशु मर भी जाता है। रोगग्रस्त पशुओं से प्राप्त पदार्थ जैसे मांस, दूध आदि भी प्रभावित होता है। इनके प्रयोग से मनुष्य के स्वास्थ्य की भी हानि होती है। दुधारू पशुओं का दूध उत्पाद कम हो जाता है तथा भेड़ों में उत्पादन की क्षमता प्रभावित होती है। पशुधन की हानि से पशुपालकों को और अपरोक्ष रूप से राष्ट्र को प्रतिवर्ष करोड़ों की हानि होती है। लीवर फ्लू पशुओं में अंतः परजीवी कीट द्वारा होने वाली बीमारियों में लीवर फ्लू प्रमुख है। यह रोग जुगाली करने वाले पशुओं में होता है जो फैसियोला प्रजाति के चपटे पत्ती के आकार के हल्के या गहरे भूरे रंग के पैरासाइट द्वारा होता है, जो प्रमुख रूप से गाय, भैंस, भेड़ आदि में पाया जाता है। कारण, यह परजीवी गांव के बाहर चारागाहों, पोखरों, तालाबों के किनारे घास और घोंघा में रहता है। जब पशु दूषित घास चरता है, पानी पीता है, तो ये परजीवी पशु के पेट में चले जाते हैं तथा 4-6 दिन में पशु के लीवर में प्रवेश कर जाते हैं तथा लीवर और पित्त नली को आघात पहुंचाते हैं। लक्षण, लीवर फ्लू से ग्रसित पशु की भूख धीरे धीरे कम हो जाती है, पशु सुस्त और एनीमिक हो जाता है, पशु के जबड़े के नीचे सूजन आ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, दुधारू पशु का दूध क्षमता कम हो जाता है, पशुओं को पतला बदबूदार दस्त आना प्रारंभ हो जाता है, पशु जुगाली करना बंद कर देता है, पशु का लीवर अत्यंत छीण हो जाता है, समय से इलाज ना होने पर पशु की मृत्यु हो जाती है।
1: हाँ भैया, पशुओं को अंतः परजीवी से कैसे बचाएं, ये विषय पर वार्ता सुनल गेल वरुण कुमार बैराग कुमार वर्मा के दिया जाए खास धन्यवाद। अलग अब यही के साथ जो बा घड़ी सूचल के इशारा करता चल जाओ। पंचो जय जवान जय किसान।

0: किसान भाइयों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, लोकगीतों का कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
5: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं राम शब्द यादव व साथी।

0: इस गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देश हमार। देश हमार कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी काव्य पाठ। कवि हैं सुरेश पाठक।
1: कविता सुनी, भ्रूण हत्या अल्ट्रासाउंड पर जौन देश खातिर ये अभिशाप बा, एगो लड़की अपना माता जी के सुतला में सपना देखा रहल बिया कि सपना में बिटिया के सुनला रोआई, कोखिया में हमरा के मति मार माई, कोखिया में हमरा के हमरो जन्म होई सेवा मोती करी हो, अजाड़ा गर्मी बरसा में कतहूँ सुतई हो, केतनो रोबे हम मोती के मनाई, सपना में बिटिया के सुनला रोआई, कोखिया में हमरा के मोती मार माई। हे माई, भूख लागी मोन करी दूधवा पियाई हो, आ मोन करी मुहवा में दाना दूगो डरी हो, हमरा खातिर मोती बन परम कसाई, सपना में बिटिया के सुनला रोआई, कोखिया में हमरा के मोती मार माई। लौड़ी बनी के हम तोहरे घर रहब, आ भाई भाऊ जाइयो के ठोन हची सहब, हम गाई बानी मोती बन तू कसाई, सपना में बिटिया के सुनला रोआई, कोखिया में हमरा के मोती मार माई। कोखिया में तो दूधवा के बदला हम तोहके चुकाए, हे माई, दूधवा के बदला हम तोहके चुकाए, आ तोहरे कहानवा के नाही हम भुलाए, आ घरवा में करब नाही केहू से लड़ाई, सपना में बिटिया के सुनला रोआई, कोखिया में हमरा के मोती मार माई, कोखिया में हमरा के तब भूख लागी तब हम खुशी मनाए, आ भाई भाऊ जाइयो के जूठन के खाए, आ भौजी के लुगरी से दिन कट जाई, भौजी के लुगरी से दिन कट जाई, सपना में बिटिया के सुनला रोआई, कोखिया में हमरा के मोती मार माई। कोखिया में हमरा के तो हो खवि से आन शादी केहू से तू करी हो, माई हो खवि से आन शादी केहू से तू करी हो, आ जीवन में भले तू कुंवर हमके रखी हो, आ कही दी है अल्ट्रासाउंड मोती केउ कराई, कही दी है अल्ट्रासाउंड मोती केउ कराई, सपना में बिटिया के सुनला रोआई, सपना में बिटिया के माता जी के कोखिया में सब केहू होला। अंतिम मंद भाई, माता जी के कोखिया से सब केहू होला, राम कृष्ण परभंस औरी राम बोला, आज के लड़की होके कल के सबके माई, आज के लड़की होके कल के सबके माई, सपना में बिटिया के सुनला रोआई, कोखिया में हमरा के मोती मार माई, कोखिया में हमरा के मोती मार माई। अब देखी पिता जी अपना लड़िका के का कह रहल बेड़े कि तू हमर बाबू हुआ, आई छोटकी बबुनी के भैया हुआ, तनी जतन से तू रह के पढ़ाई वगैरह करब, तो जतन से कर तो पढ़ैया हमार बाबू बबुनी के भैया, जतन से कर तो पढ़ैया हमार बाबू बबुनी के भैया, शिक्षक गुरु हाथ चरण झुकाव, शिक्षक गुरु हाथ चरण झुकाव, गर्व के आगे अपना मन से मिटाव, बन जा पुस्तक पढ़वैया, हमार बाबू बबुनी के भैया। तो माता पिता के चरण रोज धर, इनकर मनवा से आशीष बिटोर, बन जा चरण के छुवैया, हमार बाबू बबुनी के भैया। बन जा चरण छुवैया, हमार बाबू बबुनी के भैया। चंद्र बोस राणा शिवाजी के नाम सुनल, चंद्र बोस राणा शिवाजी के नाम सुनल, कुंवर भगत आजाद के तू चुनल, या कृष्ण गाय के चरैया, हमार बाबू बबुनी के भैया। तो सीता सावित्री भवानी के मान, सीता सावित्री भवानी के मान, अहिल्या बाई लक्ष्मी बाई के जान, या बनी जा मीरा गवैया, हमार बाबू बबुनी के भैया। जतन से कर तो पढ़ैया, हमार बाबू बबुनी के भैया। मादक व्यसन से खूब दूर रही ह, मादक व्यसन से खूब दूर रही ह, गंधो नयावे उपाय कर करी ह, गंधो नयावे उपाय कर करी ह, हुई हनी ना तुहरे हंसैया, हमार बाबू बबुनी के भैया।
0: सुरेश पाठक सरस से अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी काव्य पाठ। इसी के साथ देश हमार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

0: विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: दस साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें। 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है,
3: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
8: इतनी भी क्या जल्दी थी?
7: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
8: और ये
7: मेरी गुड़िया की ना।
9: पर दादी,
8: आपके नाम?
10: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
7: चुप चुप बोलो क्या?
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
12: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
11: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
12: कहाँ से पता चलेगा?
11: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
13: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अनदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार का मानना है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षकों के मानदेय से जुड़े मामलों को सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। श्री योगी ने ये बात आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमा किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और सकारात्मक कदम से बेसिक शिक्षा में कायाकल्प हुआ है। सरकार की मंशा है जब हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
14: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाए।
13: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। वो आज गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के क्रम में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित इस सत्र में श्री योगी ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। श्री योगी ने केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्रप्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है, जिससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
15: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जिन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने के अभियान का क्रम है।
13: श्री योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रविकिशन शुक्ल, पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। इस अवसर पर श्री योगी ने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। उधर मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां मकानों की सूची तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
16: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधा और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
13: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने आज पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। श्री गंगवार ने कहा कि जनपद में 1,985 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
17: मोदी योगी सरकार बड़े बड़े भाषण घोषणाओं में यकीन नहीं करती और जो घोषणा करती भी है वो धरातल पे, जमीन पे, गांव पे लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और उन योजनाओं को, खास तौर से स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पे पहुंचाने में आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
13: गाजियाबाद स्थित एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई, निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी वाले फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
18: मथुरा समेत समूचे ब्रज मंडल में आज से एक माह तक चलने

0: वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहू और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में बांट कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
1: प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए हैं। फतेहपुर जिले में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जारी रहने और कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चंदौली, चित्रकूट, उन्नाव और वाराणसी में कल भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून के 18 जून को दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने का भी पूरा अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सुगंध, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
3: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ,
7: 5,000 बच गए।
6: तो नई साड़ी ले ले।
7: ना,
6: पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया है।
7: जाओ भाई।
8: RBI कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
10: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
11: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
12: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
11: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
12: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
11: डायल कीजिए 8700014242।
12: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
9: फिल्म संगीत में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज की फिल्म है मेरे यार की शादी है।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज की फिल्म थी मेरे यार की शादी है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम कैंपस की बातें।
1: जो में के आर पी एफ का 13वां स्थान, 3000 से अधिक प्लेसमेंट देकर बढ़ाई पूर्वांचल की शान। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्म, बी फार्मा, एम फार्मा, बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए।
2: पूर्वांचल का पहला एनबीए मान्यता प्राप्त संस्थान केआईपीएन गीड़ा गोरखपुर।
3: साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया रेडियो के लोकप्रिय प्रोग्राम कैंपस की बातें में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग डिग्री का भविष्य, उसके स्कोप, इनोवेशन के साथ क्लासरूम से करियर तक के बारे में। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केआईपीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद रियाज खान साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज के समय में इंजीनियरिंग का कितना भविष्य है।
4: धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। देखिए, आज का दौर पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी आधारित हो गया है। चूंकि हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो या उद्योग हो, टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। ऐसे में इंजीनियरिंग की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में लाखों अवसर बनने वाले हैं। इसलिए इंजीनियरिंग का भविष्य काफी उज्ज्वल है।
3: सर, अक्सर लोग कहते रहते हैं कि केवल डिग्रियां लेने से नौकरी नहीं मिलती, कुशलता भी होनी चाहिए। इस पर आपका क्या राय है?
4: यह बात काफी हद तक सही है। आज कंपनियां केवल डिग्री नहीं बल्कि स्किल को देख रहे हैं। छात्रों को कोडिंग, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए। अगर छात्र क्लासरूम के साथ प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और नई तकनीकों को सीखते रहें तो उनके लिए अवसरों में कमी नहीं रहेगी।
3: जी सर, हमने डिग्री की बात की, कुशलता की बात की, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके केआईपीएम कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज छात्रों के लिए मौजूद है और इसके साथ क्या कुछ नया हो रहा है इनोवेशन की दृष्टि से।
4: देखिए, हमारे केआईपीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक की पढ़ाई होती है। उसमें सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग जैसी विधाओं में इंजीनियरिंग में हम शिक्षा दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे संस्थान में फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के भी कोर्सेज हैं। फार्मेसी में डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी। मैनेजमेंट में हमारे वहाँ बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए कोर्स चलाए जा रहे हैं। इसके साथ पूर्वांचल का पहला इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर खोला गया है हमारे संस्थान के अंतर्गत, जो कि केआईपीएम इनोवेटर्स फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड है, स्टार्टिंग यूपी द्वारा अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त, जहां पर बच्चे अपने इनोवेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कौशल को सीखते हैं और उसको मूर्त रूप देने का काम करते हैं। उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं वो हमारे इस केआईपीएम इनोवेटर्स फाउंडेशन में प्रोवाइड की जाती है।
3: सर, इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद करियर बनाने के कितने व्यापक विकल्प।
4: देखिए, बहुत व्यापक है। छात्र आईटी कंपनियों में, सरकारी विभागों में, रिसर्च संस्थानों में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर भी तेजी से बढ़ रहा है। आज युवा खुद का बिजनेस शुरू करके रोजगार देने वाला बन रहे हैं, जो कि आने वाले समय में विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारे संस्थान में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पे काफी जोर दिया जा रहा है। हमारे वहाँ बच्चे देश की जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जैसे डीआरडीओ, इसरो, बार्क, ऐसे संस्थानों में जाकर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और उनको अच्छा रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा पूर्वांचल में एक हैकेथन का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारे संस्थान

0: के एक छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त करके पूर्वांचल का नाम रोशन किया है, जिसको टाटा संस्थान के चेयरमैन एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने रिवार्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है।
1: सर, इसके साथ ही जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं या जो एडमिशन लेना चाहते हैं आपके KIBM कॉलेज में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान करने की ताकत है, जिससे कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है। अगर युवा लगातार सीखते रहें और नई तकनीकियों के साथ खुद को अपडेट करते रहें, तो ये सफलता निश्चित है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा पर बातचीत करने के लिए। तो साथियों, आज हमने बात की इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डिग्री और उसके स्कोप के बारे में। इसके साथ ही हमने इनोवेशन पर भी चर्चा की। तो आप भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं और इसके साथ साथ नए नए इनोवेशन सीखना चाहते हैं, तो आपकी शिक्षा के लिए KIBM कॉलेज एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
2: KIBM गीडा गोरखपुर स्थित पूर्वांचल का पहला इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, जहां प्रतिभाओं की तकनीकी दक्षता को बढ़ाकर मूर्त रूप दिया जाता है। KIBM इनोवेटर फाउंडेशन में छात्रों द्वारा बनाए गए इनोवेशन की सराहना करते हुए उन्हें राज्यपाल महोदया व तकनीकी शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आशीष पटेल द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इसी कड़ी में दो कदम और आगे चलते हुए TCS द्वारा आयोजित प्रदेश स्तर पर हुए AI हैकथॉन में KIBM के छात्र आकाश यादव को पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया। एडमिशन ओपन, कॉन्टैक्ट KIBM गीडा गोरखपुर।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कैंपस की बातें। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता निराला। वार्ताकार हैं रीना जायसवाल।
4: परिचय। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता का छाया अल्प आयु में ही उठ गई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही विद्यालय में हुई थी। बचपन से ही ये कुश्ती, घुड़सवारी, इन सब खेलों में अत्यधिक रुचि रखते थे। कुछ समय पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु हो गई तथा इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई, लेकिन उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। परिवार के भरण पोषण के लिए इन्होंने महिषादल राज्य में नौकरी की थी। हिंदी साहित्य का इन्हें अच्छा ज्ञान था, साथ ही भारतीय दर्शन में भी इनकी विशेष रुचि थी। इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ, लेकिन वह भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गईं। ऐसे समय में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और उनके सहयोग से रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय और मतवाला का संपादन किया। इसके 3 वर्ष पश्चात ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तकमाला का संपादन किया तथा सुधा नामक पत्रिका में संपादकीय लिखने लगे। इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी और स्वाभिमान अत्यधिक प्रबल, इसलिए सेवावृत्ति इन्हें रास नहीं आई और ये इलाहाबाद आ गए। आर्थिक स्थितियां विषम होने पर भी इनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति दया और करुणा भरी थी। कुछ समय बाद इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया। पुत्री के देहांत के बाद उनकी स्मृति में इन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता की रचना की। निराला जी का स्वाभिमानी तथा स्पष्टवादी थे। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थे। इस प्रकार दुख और कष्टपूर्ण जीवन के बीच काव्य साधना करते हुए इस महान साहित्यकार का 1961 ईस्वी में निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। निराला जी के काव्य सृजन का आरंभ छायावादी युग से हुआ। कोमल और मधुर भावों से ओतप्रोत रचनाओं में इनकी छायावादी कवि के रूप में पहचान बनी। काल के क्रूर व्यवहार से इन्हें विद्रोही कवि बना दिया। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ जन्मभूमि की वंदना नामक कविता की रचना से किया। सरस्वती और मर्यादा जैसी सशक्त पत्रिकाओं से इन्होंने हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। वर्ष 1929 में इनका प्रथम लेख सरस्वती में प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात जूही की कली नामक कविता की रचना कर इन्होंने संपूर्ण साहित्य में हलचल मचा दी। इनकी गणना छायावाद के 4 स्तंभों प्रसाद पंत, महादेवी वर्मा और निराला के रूप में होने लगी। इनकी काव्यधारा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता इनके तटों का स्पर्श कराती है। इन्होंने दीन दुखियों और शोषित वर्ग के पीड़ा को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। कृतियाँ। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने कविता के अतिरिक्त उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे, लेकिन मूलतः ये कवि थे। इनकी कविताओं में विषय की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता है। सिंगार, रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, प्राकृतिक वर्णन, शोषित वर्गों का शोषक, पाखंडियों के प्रति व्यंग इनके कविताओं की विशेषता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। राम की शक्ति पूजा, यह कृति कवि का ओज तथा पौरुष प्रकट करती है, यह इनकी श्रेष्ठ रचना है। परिमल, इसमें सामाजिक विसंगतियों, आडंबरों के विरुद्ध तीव्र विद्रोह एवं निम्न वर्ग के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त हुई है। इस कविता संग्रह में बादल, राग, विच्छुक, विधवा आदि कविताओं का संकलन है। गीतिका, इसमें देश प्रेम, प्राकृतिक प्रेम और श्रृंगार तथा दर्शन की भावना युक्त 101 लघु गीतों का संचय है। तुलसीदास, यह गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी पर आधारित खंड काव्य है। यह छायावादी शैली में रचित काव्य है। अनामिका, इसमें कवि की प्रकृति परक कलात्मक रचनाएं संग्रहित हैं। यह छायावादी कविताओं का सर्वश्रेष्ठ संग्रह है। सरोज स्मृति, यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है जो इन्होंने अपनी पुत्री के याद में लिखी। कथा साहित्य, अपरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली लीली सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी झमार, इसके अतिरिक्त तुलसीदास, कुर्मता अलिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि अन्य काव्य संग्रह हैं। काव्यगत विशेषताएं, कला पक्ष, भाषा, निराले जी ने साहित्यिक एवं परिमार्जित खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। इनकी भाषा के दो रूप हैं, एक रूप में संस्कृत शब्दावली की बहुलता है तथा वह क्लिष्ट और दुरूह है, तो दूसरी सरल है। इनकी भाषा प्रभावपूर्ण है। नीलानंद जी ने दोनों प्रकार की भाषा का साधिकार प्रयोग किया है, सरल भाषा, क्लिष्ट भाषा। छंद एवं शैली, निराला जी छंद के बंधन में नहीं बंधे हैं। उन्होंने स्वयं ही छंद का विकास किया है। अतुकांत मुक्तक छंद का निराला जी ने ही विकास किया है। अलंकार, निराला जी ने अलंकारों के संबंधों में नए प्रयोग किए हैं, साथ ही प्रचलित अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रयोग भी उन्होंने किया है। छायावादी कवियों की भांति मानवीकरण को भी अपने काव्य में अपनाया है। भाव पक्ष, स्वदेश प्रेम, निराला की कविताओं में देश प्रेम की प्रबल भावना पाई जाती है। तरु, त्रिलवन, लता, वचन, अंचल में खचित सुमन, गंगा जल, ज्योतिर्जल, धवल हार गले, छायावादी कोमलता, निराला जी की कविता में प्रेम और सौंदर्य के कोमल पक्षों का भावपूर्ण चित्रण मिलता है। प्रगतिवादी भावना, शोषित पीड़ितों के प्रति सहानुभूति तथा अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध प्रबल विद्रोह का भाव निराला की कविता में पाया जाता है, जो प्रगतिवाद का प्रवाह है। ऐसे स्थलों पर निराला जी ने तीखे व्यंग किए हैं। एक ओर पंत कृष्ण का है, कंकाल शेष नर, मृत्यु प्राण बैठा, सशरीर दैत्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति छीण कंठ है, तीव्र श्वास, जीता ज्यो जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप। प्राकृतिक चित्र, निराला जी का प्राकृतिक चित्र चेतन और सजीव है। निराला जी की कविता में प्रकृति के अनेक प्रकार मनोहर चित्र मिलते हैं। सौरभ वशना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छिलकटी नटी, नवल नित्य पर मधुर आवेश शपल। रचनाएं, काव्य निराला जी ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही शैलियों में काव्य रचना की है। गद्य, विल्ले शूर, बकरिया, अप्सरा, अलका, प्रभावती इत्यादि उनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। रचनाएं उच्च कोटि की हैं, परंतु मूलतः वह कवि हैं, कवि ही नहीं जन कवि हैं। भाषा, निराला जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों, विदेशी शब्दों के अत्यधिक प्रयोग से छायावादी रचनाओं की भाषा कुछ क्लिष्ट हो गई है, परंतु प्रगतिवादी रचनाओं में सहज एवं सरल प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में निरसता नहीं है, वरन संगीत की सी मधुरता विद्यमान है। शैली, निराला जी ने रचनानुसार दुरू, सरल एवं सुबोध शैलियों का प्रयोग किया है। भाषा की क्लिष्टता छायावादी रचनाओं में तथा सरलता प्रगतिवादी रचनाओं में मिलती है। निराला जी ने मुक्त छंद का प्रयोग किया। इनकी दो शैलियाँ स्पष्ट है। छायावादी गीतों में प्रयुक्त लंबी तत्सम बहुल एवं गहन विचारों से ओतप्रोत शैली, सरल प्रवाहपूर्ण व्यंगपूर्ण और चुटीली शैली भाषा पर निराला जी का पूर्ण अधिकार था। साहित्य में स्थान, कवि श्रेष्ठ निराला विलक्षण प्रतिभा के कवि थे। इन्हें हिंदी का क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, जिनकी झलक इनकी काव्य रचनाओं में देखी जा सकती है। जीवन के हर मोड़ पर इन्हें बहुत अधिक संघर्षों और विरोधी का सामना करना पड़ा, फिर इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अमूल्य काव्य रचनाएं प्रदान की। अपने विलक्षण व्यक्तित्व एवं निराले कवित्व के कारण निराला जी हिंदी काव्य जगत के सम्राट माने जाते हैं।
3: रीना जायसवाल से अभी आप सुन रहे थे वार्ता निराला। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देश का अन्न।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह।

संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार थे जगजीत सिंह। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। ये भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के

अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन।

0: वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
2: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
3: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। NCB ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग NCB और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक NCB मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के NCB मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाज़ों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
1: ये है मेरा कूपे। जूडिस का प्रोग्राम अचानक बदल गया, मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
2: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
1: कूपे में भी?
2: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
1: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
2: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
1: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
2: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
3: अच्छा, मैम साहब आ गए। आप तो कह रहे थे।
1: सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको, सांत्वना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
2: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
3: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
1: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
2: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
1: ओके, लौट कर बातें होंगी।
2: ओके।
3: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
2: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लूं। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
4: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है। मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
2: अच्छा,
4: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
2: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
4: मेरी शादी नहीं हुई है।
2: क्या?
4: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
2: आप कितने दिन से?

0: घूम रही हैं?
1: कई वर्ष हो गए।
0: आपके बहुत मित्र हैं।
1: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
0: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, एलएसडी आदि का सेवन करती हो?
1: करती हूँ। उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
0: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
1: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
0: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे।
1: आती हूँ।
2: बाहर अभी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है।
3: अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
1: ये मेरी डायरी है।
3: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
1: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
3: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
2: खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो।
3: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
1: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
3: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
1: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
3: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
1: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
3: प्लीज साथ देने के लिए एक पैक।
1: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
3: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
1: पीजिए।
3: बुरा मान ली, प्लीज। बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज हैं ये विदेशी युवतियाँ, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
1: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
3: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
1: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
3: गणित, विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
1: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
3: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
1: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
3: ना ना ना ना ना, नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज।

0: प्लीज।
1: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
0: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times, लेकिन वहाँ गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
1: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
0: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
0: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
1: बैठे रहो।
0: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
1: नहीं।
0: तुम्हें छू सकता हूँ?
1: नहीं।
0: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगी?
1: नहीं।
0: क्यों?
1: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं, वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
0: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
1: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
0: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
1: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
0: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने।
0: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
0: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
0: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
0: प्लीज
1: मत, तेज पुंज है, औरत उसके तेज को छेड़ने वाली है।
0: देखो,
1: ये दलीलें अब्बासी होती
0: है। प्लीज,
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है।
0: मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ इसे क्षण उठकर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
0: नहीं,
1: जाते हो या नहीं?
0: सांत्वना,
1: कौन है? क्यों आए हैं इस समय?
2: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
2: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ, लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
2: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
2: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं, इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
3: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था, कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
2: ठीक है, मैं जाता हूँ, गुड नाइट।
3: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
0: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: जीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह है सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं ना कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो ना मानोगी, एक बात पूछू?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
1: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम?
1: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो। लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
0: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
1: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
0: शब्दों के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो, ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
1: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो, इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
0: ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सरजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद डिब्बे से उतर जाने को विवश करते या फिर

0: छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है। कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हूँ।
1: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
1: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
1: अच्छा अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
3: मम्मा, तुम आज बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
1: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
3: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
1: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
3: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
1: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
3: हाँ यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगी मामा?
1: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुला अपने भैया को। पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा। माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं, मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? कैसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
4: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
4: सांत्वना, हम ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
1: हाँ कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
4: तुम शादी कर लो।
1: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
4: धोखा तुम आप दे रही हो।
1: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहते हो करते हूँ।
4: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार ना बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार ना बनूं?
1: शिकार? ये तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
2: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
1: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
2: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल।
1: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
2: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
1: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
2: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
1: आप नहीं पूछोगे?
2: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
2: जी मैं आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
1: फिर रुक क्यों गए?
2: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
1: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
2: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी।
1: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता।

0: असत्य। वो न तन को बांध पाता है न मन को, इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
1: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
0: इसे हजार मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया अब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
2: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ। विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है?
0: मेरा नाम सांत्वना है।
2: ओ, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत भाई, बधाई हो।
1: निगम, इनसे मिलो। ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
2: हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली। अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है। वाह, माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
0: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
2: Oh, I'm sorry. मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
0: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
2: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। और सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
0: दरवाजा खुला रहने दो।
1: क्यों?
0: मेरी इच्छा।
1: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
0: तो आप में भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
1: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
0: बड़ी सुंदर जगह है ये।
1: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछो का स्थान।
0: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछो का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना। प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
1: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
0: कंडक्टर, मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
3: जी अभी आया। लाइए, मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
0: ये लीजिए।
2: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ, खूब बातें करेंगे दोनों। सामान ले आओ।
1: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है, जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूँ।

कूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध हैं और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari style. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin, and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mohotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mohotsav in Hampi, Urja Music Festival Delhi, Pandit Ram Marathe Festival Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mohotsav Goa, Gunjan Sangeet Mohotsav Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards. To name some, Akashwani A-Grade Artist for Indian Classical Flute, Thane Ratna Award by Hindustan Times, Pandit Sangameshwar Gurav Puraskar, Pandit Ram Marathe Puraskar. Surmani title from Sur Shringar Sansad Mumbai, National Scholarship from Union Government of India, Vrindaban Gurukul Scholarship. Tonight, Sri Vivek Sonar presents Rag Chandra Kaus Alap, Jod and Madhyalayagat, set to Rupak Tal and Drutagat, set to Teen Tal. He will be accompanied on tabla by Sri Ojas Adhiyar.

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाज़ों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honour that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honour for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defence, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy, Prahlad Joshi, said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with a private English news daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future-ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening, and the growing contribution of clean energy in powering countries' growth journey. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today launched various development projects worth approximately 100 crore rupees in Dwarka Assembly constituency of National Capital. Addressing the gathering, the Chief Minister said that after completion of these projects, there will be significant improvement in problems such as waterlogging, damaged roads, sewer overflow and power supply in the area. Delhi Police has issued a memorandum regarding rationalization of government vehicle usage in its offices and units and measures for reduction of fuel consumption. The memorandum has been issued by the Office of Police Commissioner in view of the prevailing international situation and Prime Minister Narendra Modi's appeal for austerity measures and reduction in fuel consumption. In IPL cricket, Rajasthan Royals have set a target of 194 runs for Delhi Capitals in Delhi. Chasing the target, Delhi Capitals were 147 for 3 in 15.4 overs when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।

स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 तथा 7 सेकेंड हुए हैं। आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।